0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा कि चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। इब्ने इंशा की कलम और जगजीत जी की आवाज में हमने सुनी ये खूबसूरत गजल। और नए साल के इस नए से मिर्ची महफिल में आपका इस्तकबाल करता है आपका ताशी। हाँ जी, और चांद का इस्तेमाल तो आपने कई बार सुना होगा शायरी और कविताओं में, लेकिन आज आपको बताऊं चांद का एक पर्यायवाची, बोले तो सिनोनिम, जिसका इस्तेमाल करके भी कई सारे शेर हुए हैं, और वो लफ्ज है महताब। अब इसका इस्तेमाल आप देखें दो शेरों से। पहला अजहर इनायती साहब की कलम से लिखते हैं कि हर एक रात को महताब देखने के लिए मैं जागता हूँ तेरा ख्वाब देखने के लिए। वाह जी वाह, हबीब जालिब के यहाँ भी बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है चांद के सिनोनिम महताब का। गजल के दो शेर मुलायजा फरमाएं कि हमारी भी संभल जाएगी हालत, वो पहले अपनी जुल्फें तो संभालें, निकलने को है वो महताब घर से, सितारों से कहो नजरें झुका लें। आए हाय, अब चांद से डिराइव्ड एक और लफ्ज है चांदी, जिसके बड़े खूबसूरत इस्तेमाल के साथ आप सुने जफर गोरख पुरी साहब का लिखा अगला आइकॉनिक नगमा, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। पंकज उदास साहब की आवाज में सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: बाकी सब गंगा।
1: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर, डाउनलोड नाउ।
2: हेलो,
3: हाय, ये कॉल बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
4: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए।
4: 33501।
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
5: हाय।
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए।
4: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
6: ये बेल जा रही है।
4: हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई तो एक बात सुन, ये
4: आपके पास
2: है?
4: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर।
2: हेलो,
4: हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
2: किस किस से पूछे जा रहे हैं?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
2: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
4: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह बचाने के लिए थोड़ी ना आता है।
4: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते।
6: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
2: किसने दिया मेरा नंबर?
6: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
2: अरे मैं कुकड़ू को।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय, ये दिल, ये पागल दिल मेरा, मोहसिन अली नकवी साहब की कलम और गुलाम अली साहब की आवाज में सुनी हमने ये खूबसूरत गजल सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आपका ताशी आपको रूबरू करवाए उर्दू के पहले सबसे बड़े शायर जिन्हें खुदाए सुखन मतलब शायरी का खुदा कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन मीर तकी मीर साहब की। 1810 के लखनऊ में इनका जन्म हुआ और लफ्जों मानी के जादूगर बेमिसाल शायर मीर तकी मीर उर्दू गजल का वो प्रेत हैं कि जो उसकी जकड़ में आ जाता है जिंदगी भर वो उसके अधीन ही रहता है। बड़े आइकॉनिक शेर रहे हैं उनके जिनमें से कुछ आपके नजर कर रहा हूं। लिखते हैं कि उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया। तदबीरें मतलब टैक्टिक्स। उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। एक और मेरा बड़ा पसंदीदा शेर है उनका कि होगा किसी दीवार के साये में पड़ा मीर। होगा किसी दीवार के साये में पड़ा मीर क्या रब्त मोहब्बत से उस आराम तलब को। वाह जी वाह, उनकी शायराना काबिलियत का इससे बढ़कर क्या सबूत हो सकता है कि जमाने के मिजाजों में बदलाव के बावजूद उनकी शायरी की महानता का सिक्का हर दौर में चलता रहा। खैर, बहुत हुई बातचीत, ज्यादा वक्त जाया करे बगैर राजेश रेड्डी साहब की कलम और हरिहरन जी की आवाज में सुनते हैं अगली गजल हल्का सा एक नशा सा सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: जफर गोरखपुरी साहब की कलम और पंकज उदास जी की आवाज में हमने सुना नगमा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और अब मौका है, दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे। किस्सा कॉर्नर, किस्सा कॉर्नर
1: की आपका ताशी सुनाए आपको आज का किस्सा, जो आ रहा है जिगर मुरादाबादी साहब की जानिब से। किस्से का नाम बंदों की खुशी। एक बार जिगर, शौकत थानवी और मजरूह सुल्तानपुरी दोपहर के वक्त कहीं काम के लिए बाहर निकले थे, तो इरादा किया गया कि नमाज अदा कर ली जाए। शौकत साहब एक काम के लिए चले गए, जिगर साहब मस्जिद के बजाय एक रेस्टोरेंट में जा घुसे। मजरूह ने कहा, जिगर साहब ये मस्जिद नहीं रेस्टोरेंट है। जिगर ने जवाब दिया, मुझे मालूम है, सोचा कि वक्त तंग है, अल्लाह को तो खुश कर नहीं सकता, उसके बंदों को ही खुश कर लूं, आइए। वाह जी वाह, काश हमारे दोस्तों में भी इतना सुहूर होता जिगर साहब जैसा, कि बिना मांगे पार्टी दे देते, है कि नहीं। खैर मजाहिया बातों से आगे बढ़ते हैं लता जी की आवाज में रेंडर्ड एक खूबसूरत नगमे की ओर। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।
3: ये

coming home.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: शहरयार की कलम और तलत साहब की आवाज में सुनी हमने खूबसूरत गजल, जिंदगी जब भी तेरी बज्म में लाती है हमें, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे लव्स आजकल
1: कि आपको मुखातिब कराएं हमारे आज के लफ्ज से, रफ्ता, जिसका मानी होता है स्लोली या धीरे। अब तस्लीम फाजली साहब की लिखी और मेहदी हसन साहब की गाई मशहूर गजल का ही एग्जांपल ले लें। शेर है कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, मतलब धीरे धीरे वो मेरी हस्ती, मतलब बीइंग का सामान हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। और अब एक और शेर देखें कुमार बाराबंकवी साहब के जानिब से, लिखते हैं कि भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए, आए हाय। तो ले जस्ट लाइक दैट आपके उर्दू लफ्जों के आर्सेनल में जुड़ गया है एक नया लफ्ज, रफ्ता, मानी स्लोली। ऐसे ही और लफ्जों को समझने जानने के लिए जुड़े रहें मिर्ची महफिल से। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आनंद बख्शी जी की लिरिक्स और सुरेश वाडेकर साहब की आवाज में हमने सुना सनी मूवी से नगमा और क्या अहदे वफा होते हैं। और मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। और इश्क मेरे ख्याल से ना वो बीमारी है जिसमें शख्स जब पड़ता है तो उसका इलाज ढूंढने के बजाय और बीमार होना चाहता है। अकबर इलाहाबादी साहब का एक बड़ा उम्दा शेर है कि इश्क के इजहार में हर चंद रुसवाई तो है, पर करूं क्या, अब तबीयत आप पर आई तो है। मुनव्वर राणा साहब के यहाँ भी इश्क को एक बीमारी की तरह ट्रीट किया गया है। वो लिखते हैं कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। उफ, अगली गजल में आप मुलाकात करेंगे एक बीमार से जो पूछ रहा है दूसरे से कि तुम भी बीमार हो कि नहीं। कैफी आजमी साहब की कलम और जगजीत जी की आवाज से सजी ये खूबसूरत गजल, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। फरीदा खानम जी की आवाज में सुनी हमने ये खूबसूरत गजल। समय हो चला है मेरे जाने का, लेकिन ऑब्वियसली जाने से पहले
2: मिर्ची महफिल पे अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल पर आप हैं अपने ताशी के साथ, और ये मेरा ख्याल है कि सच्चाई सबसे ज्यादा उदास होती है। कुछ गजलें जो सबसे ज्यादा सच कह रही होती है ना, सबसे ज्यादा ट्रूथफुल साउंड करती हैं, वो ऐसे कचोट देती हैं अंदर से ना एकदम। ये गजल उनमें से एक है और न जाने क्यों मेरे जहन में अटकी हुई है। तो आज रात आपके नजर है जगजीत सिंह जी की ये खूबसूरत गजल मिर्ची महफिल पर।

0: कोई जवाब है आपके पास?
1: मेरे पास तो नहीं है दोस्त, तो इसलिए मैं चुपचाप यहां से अपना सामान बटोर के चलने वाला हूँ। एक गजल के हवाले करके आपको छोड़ जाने वाला हूँ मैं। अगर आपको मुझसे कुछ बातचीत करनी हो तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। स्टे ट्यून टू मिर्ची, मिर्ची महफिल सुन रहे थे आप। आपका ताशी था आपके साथ। इट्स हॉट।

है दिल तेरी चाल ढाल हाल बाल सब बवाल सब गजब तेरी चाल ढाल हाल बाल उफ़ hips lips eyes thighs सब गजब सब गजब सब गजब सब गजब सब गजब सब गजब सब गजब सब गजब

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La
1: virpa, la burka. Mirchi, burka. Hello.
2: Hi. Ye call बैंक से है. आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है. हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा. पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं.
3: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज.
1: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
3: एटीएम वाला पासवर्ड है सर. ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
1: हूँ. एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं.
3: हाँ जी.
1: हाँ बोलिए.
3: 33501.
1: अच्छा
3: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ. शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको. ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला.
1: हेलो,
3: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा. हाँ मैं फोन मिलाता हूँ. हेलो डार्लिंग, हाय.
4: हाय.
3: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
4: विक्की का पासवर्ड 33501. एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है.
3: धोबी से
4: पूछ लीजिए.
3: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड.
1: हेलो
3: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर.
5: ये बेल जा रही है.
3: हेलो भैया. हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
1: अरे भाई तो एक बात सुन, ये
3: आपके पास
1: है?
3: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर.
1: हेलो.
3: हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है. मेरी बात सुनिए ना.
1: किस किस से पूछे जा रहे हैं?
3: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर आपके पास.
1: भाई ये क्या कंफर्म? भाई मेरा एटीएम कार्ड है.
3: ये एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
1: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह बचाने के लिए थोड़ी ना आता है.
3: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है. कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था. बेकार में एप्लीकेशन डाल दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते.
6: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है. 33501.
1: किसने दिया मेरा नंबर?
6: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था.
1: अरे मैं कुकड़ू को.
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: cracker. ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट हिट हिट हिट गाना, हिट गाना, हिट गाना।
0: Radio Mirchi, New York. It's hot.

0: Radio Mitri, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
3: दीवाना.
4: एक दीवाना शहर में.
3: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी.
4: दो दीवाने शहर में.

पुरानी जीन्स पे हेलो हेलो वेलकम। मेरा नाम है श्रेया, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। अच्छा, मेरी और मेरी मम्मी की ना हमेशा एक बात पे आर्ग्यूमेंट होती है। मेरी मम्मी हमेशा एक चीज का ताना मारती है कि अरे अब तो कोई फैशन स्टेटमेंट बनता ही नहीं है, अब के जो सेलिब्रिटीज हैं, अब के जो हीरो हीरोइन हैं, उनकी इतनी पॉपुलैरिटी होती ही नहीं है जो हमारे टाइम पे होती थी। मतलब अगर शर्मिला टैगोर ने कुछ पहन लिया, शबाना आज़मी ने कुछ पहन लिया, या हेमा मालिनी ने कुछ पहन लिया, वो हम सारी लड़कियां कॉलेज में फॉलो करते थे। तो मैंने सोचा कि चलो अगर ऐसी बात है तो जरा ढूंढा जाए कि आखिर किस किस ने, कौन कौन सी हीरोइंस ने एक्चुअली में कुछ फैशन स्टेटमेंट्स को पॉपुलर किया और वो आज तक फॉलो होता है, जैसे कि शर्मिला टैगोर। अभी बताऊंगी, वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची।
2: हेलो
3: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे 2 मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: स्कीम मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: 2 दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ, आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
2: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
2: कोई बोल रहा है?
3: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आपसे सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
10: थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये बेल बॉटम पैंट्स जो हम लड़कियों को बहुत पसंद है ना आजकल, ये एक्चुअली में सबसे पहले पता है कौन लाया था? शर्मिला टैगोर। पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया। शर्मिला टैगोर ने कई सारी अपनी फिल्मों में ना ये बेल बॉटम पैंट्स पहने, और उसके बाद मेरी मम्मी बताती हैं कि कॉलेज में लड़कियां वही पहन करके आती थी, उनका वाला विंग लाइनर लगा करके। नॉट जस्ट दैट, बहुत सारे जो कुर्ताज जो कि फ्लारी प्रिंट वाले होते हैं ना, वो भी सबसे पहले शर्मिला जी लेकर के आई थी। पुरानी जीन्स पे ना आज मैं वो हीरोइंस के सारे स्टाइल स्टेटमेंट्स ढूंढ करके लाई हूँ जो उस जमाने में पहने गए या उस जमाने में किए गए और आज तक हम उसे फॉलो करते हैं। सो कम राइट बैक, अभी बताऊंगी हेमा मालिनी जी का फैशन स्टेटमेंट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: ¡Ay! ¡Ahora va! ¡Ahora va! ¡It's Gunny!
1: Radio Merchy, New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

ओवरसाइज सनग्लासेस हम सबके पास कहीं ना कहीं पड़े होंगे जो कि यू नो बहुत ही कूल लगते हैं आजकल, लेकिन आपको पता है कि ओवरसाइज सनग्लासेस, ग्लेयर्स, गॉगल्स या जो भी कह लो, वो सबसे पहले पता है कौन सी हीरोइन ने पहने थे? हेमा मालिनी जी ने। पुरानी जीन्स पे ही हाय, मैं हूँ श्रेया। मैं बता रही थी ना कि एक दिन मेरी और मम्मी की बहुत आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, तो मम्मी ने मुझसे कहा कि श्रेया, जो भी फैशन स्टेटमेंट तुम लोग आज करते हो ना, वो हमारे टाइम की हीरोइंस ने किए थे और हम सब लड़कियां कॉलेज में या हॉस्टल में फॉलो किया करते थे। तो जब मैंने जा कर के थोड़ी रिसर्च की और इसके बारे में पढ़ा, तो मुझे पता चला कि जो ओवरसाइज एकदम आधे चेहरे को ढकने वाले जो सनग्लासेस है ना, वो सबसे पहले ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी जी इंडस्ट्री में लेकर के आई थी। एंड नॉट जस्ट दैट, वो वाइब्रेंट कलर्स, ऑरेंज, चटक ग्रीन, ये भी उन पर बहुत खूबसूरत लगता था। प्रिंटेड लहंगास, पहले जो हीरोइंस थी वो एक्चुअली में मोनो कलर पहनती थी यानी सिंगल कलर, लेकिन हेमा मालिनी जी अपने फैशन के साथ खूब एक्सपेरिमेंट करती रहती थी, सो प्रिंटेड लहंगास भी उन्होंने सबसे पहले शुरू किए थे। सो अभी मैं बताऊंगी कि रेखा जी से कौन सी चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी। वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

दो चोटी चटक रेड लिपस्टिक के साथ। मम्मी बताती है कि उनके हॉस्टल में ना एक टाइम के बाद सारी लड़कियां दो चोटी और साड़ी पहन के आती थी, दो चोटी और सूट पहन करके आती थी और उस पे रेड लिपस्टिक, पुरानी जीन्स पे। हाय, मैं हूँ श्रेया और मैं बता रही थी ना कि कैसे एक दिन मेरी और मम्मी का आर्ग्यूमेंट हो रहा था, तो मम्मी ने कहा कि आपके जमाने के हीरो हीरोइंस क्या स्टाइल स्टेटमेंट लाएंगे, फैशन स्टेटमेंट लाएंगे जो हमारे टाइम की हीरोइंस लेकर के आती थी और हम सब उसे फॉलो करते थे। सो खूबसूरत फिल्म अगर आप देखो, सिलसिला देखो, आपको रेखा जी दो चोटियों में दिखेंगी और वो भी साड़ी पे दो चोटियां। मम्मी बताती है कि जैसे ही खूबसूरत फिल्म आई रेखा जी की, सिलसिला आई जिसमें वो एकदम ब्यूटीफुल कलर की लिपस्टिक लगाई है ना, हर लड़की कोशिश करती है बनके ठनके आने की। वैसे रेखा जी के ना और भी स्टाइल स्टेटमेंट्स थे जो पॉपुलर हुए, बताऊंगी उनके बारे में भी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ज्योमेट्रिक प्रिंस इन्होंने सिलसिला में भी पहने पुरानी जीन्स पे। हाय, मैं हूँ श्रेया और आज ना उस जमाने की हीरोइंस के लाए हुए फैशन स्टेटमेंट्स जो हम आज तक इस जमाने में फॉलो करते हैं ना, वो ढूंढ करके लाई हूँ मैं। सो रेखा जी ना ज्योमेट्रिक प्रिंट्स पहनती थी और जंप सूट्स जो आजकल हमें बहुत पसंद है, एक्चुअली में सबसे पहले रेखा जी ने पहने थे। खूबसूरत फिल्म ले लो, सिलसिला ले लो, एंड सो मैनी ऑफ देम। भाई, शी वॉज नोन फॉर हर बोल्ड लुक्स और फिर उनकी रेड चटक लिपस्टिक। ओहो हो वैसे रेखा जी की बिंदी भी ना बहुत पॉपुलर हुई थी, वो ब्लैक वाली भी और रेड वाली भी जो उन्होंने सिलसिला में लगाई है। आज ना ऐसी वो सारी हीरोइंस के फैशन स्टेटमेंट्स जो कि पूरे इंडिया में रेज बन गए थे, हर लड़की फॉलो कर रही थी, हर लड़की जो कॉलेज गोअर थी, हर लड़की जो हॉस्टल में रहती थी, हर लड़की। वेल, आज पुरानी जीन्स पे अगला किसका बताऊंगी, हाउ अबाउट जीना तमान। तो वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सका बाना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो, और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस,
3: कौन बोल रहा है
4: ये, और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये,
3: क्या मजाक चल रही है,
4: क्या मजाक चल रहा है। सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए, इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
5: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़िया। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कुकड़ू।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

डिम्पल कपाड़िया के दो क्यूट जूड़ाज आपको पता है किस नाम से फेमस हुए थे? बॉबी जूड़ाज। पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया। तो मैं बता रही थी कि कैसे मेरी मम्मी ना उस दिन मुझे बता रही थी कि उनके टाइम पे भाई फैशन स्टेटमेंट्स जो हीरोइंस लेकर के आती थी वो हर लड़की फॉलो करती थी, स्पेशली मम्मी के कॉलेज और हॉस्टल में तो डेफिनेटली फॉलो होते थे। सो शी वॉज टेलिंग मी कि डिम्पल कपाड़िया जब बॉबी फिल्म में आई, अगर आप देखो ना फिल्म, तो उन्होंने कई सीन्स में दो क्यूट जूड़ा बनाया है, मतलब एकदम मिडल पार्टिंग करके अपने बालों के साथ। शी सेड कि वो इतने फेमस हुए कि हम सारी लड़कियां कॉलेज में ना वो छोटे छोटे जूड़े बना के जाते थे। वैसे जीनत अमान और किस चीज के लिए पॉपुलर हुई थी अभी बताऊंगी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मिनी ड्रेसेस ले लो, जंपसूट्स ले लो, हॉल्टर नेक ले लो या फिर शिमरिंग साड़ी ले लो, ये सब लाने वाली थी जीना तमान। पुरानी जीन्स पे मेरा नाम है श्रेया, जो उस जमाने की हीरोइंस के फैशन स्टेटमेंट, स्टाइल स्टेटमेंट्स की भी बात कर रही है जो इस जमाने तक हम फॉलो करते हैं। सो जीना तमान ने कई सारी फिल्मों में जंपसूट्स तो पहने ही हैं, साथ में मिनी ड्रेसेस, जो उस टाइम हीरोइंस बहुत कम पहनती थी, वो जनरली साड़ीज में ज़्यादा दिखा करती थी। पर जीना तमान ऑफकोर्स बहुत ही बोल्ड हीरोइन मानी जाती थी, तो शी वॉज द वन जो एक्चुअली में मिनी ड्रेसेस लेकर के आई थी हमारी इंडस्ट्री में, और उसके बाद ना लड़कियों ने उन्हें जम करके फॉलो किया था। वैसे ये डिस्को ईरा वाला वो जो शिमरिंग ड्रेस है जो हम पार्टीज में पहनने की कोशिश करते हैं, ये कौन लाया था अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
2: किया।
1: कभी किसी को

हेलेन इतना एक्सपेरिमेंट करती थी अपने कॉस्ट्यूम्स के साथ, आज तुम हर पार्टी में वो शिमर वाली ग्लिटर वाली ड्रेस पहनने की कोशिश करते हो ना टू स्टैंड आउट। एक्चुअली में हेलेन जी ने ये शुरू किया था क्योंकि उन्होंने फिल्मों में बहुत सारे कैबरी सॉन्ग्स किए हैं ना। आशा ताई की आवाज होती थी, हेलेन जी का ग्लैमरस सेंसुअल डांस होता था और साथ में उनकी एकदम सीक्वेंस वाली शिमर वाली ड्रेस होती थी। कई बार तो वो फेदर्स को भी अपने बालों में लगा लेती थी, विच लुक सो क्यूट। सो पुरानी जीन्स पे ना आज उस जमाने की हीरोइंस जो ऐसे फैशन स्टेटमेंट्स लेकर के आई जो इस जमाने तक चलते हैं, श्रेया के पास होंगे। सो कम राइट बैक।

0: कुछ कहता
1: है। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: Radio Mitri, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
3: hey! तुमने कभी किसी से प्यार किया?
4: किया!
3: कभी किसी को दे-

मुमताज साड़ियां तो आज भी चलती हैं पुरानी जीन्स पे। हाय, मैं हूँ श्रेया। और आज ना उस जमाने की हीरोइंस जो फैशन स्टेटमेंट लेकर के आई जो इस जमाने तक चलते हैं, बस उनकी बात हो रही है। सो एक तो मुमताज जी साड़ियों को एक डिफरेंट तरीके से ड्रेप करने का फैशन लेकर के आई थी। उनकी जनरली साड़ी, स्पेशली इन द सॉन्ग बिंदिया चमकेगी, अगर आप ये गाना देखोगे ना, तो उन्होंने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है, सैफ्रन कलर है राधा, और उसको ना राउंड राउंड राउंड करके उन्होंने पहना है, और उसपे उन्होंने सिल्वर कलर की बिंदी लगाई है। मेरी मम्मी बताती हैं कि ये जो साड़ी थी वो मुमताज साड़ी के नाम से फेमस हुई। और मुझे लगता है कि आज भी जब हम वो रेडीमेड साड़ीज लेते हैं या फिर ऐसे ड्रेप कराते हैं ना, अगर आप किसी सैलून में जाओ, आप एक्चुअली में अगर बोलोगे कि मुमताज साड़ी की तरह ड्रेप कर दो, तो स्टाइलिस्ट को पता चल जाता है कि उन्हें कौन सी साड़ी आपको पहनानी है। That was the craze. So, पुरानी जीन्स पे ना आज उस जमाने की हीरोइंस जो ऐसे फैशन स्टेटमेंट्स लेकर के आई जो इस जमाने तक चलते हैं। श्रेया के पास होंगे, so come right back.

0: Milchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabala. Burga, burga. La vipa la burga. Milchi, burga.
1: Hello.
2: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
1: हाँ जी बोलिए।
2: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
1: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ। तो हिडन चार्जेस?
3: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
1: कौन बोल रही है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
1: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
4: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
1: हेलो कौन बोल रहा है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
1: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
3: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
1: हेलो मैडम।
2: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
1: कौन बोल रहा
2: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
1: अभी कोई और बोल रही थी।
2: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
1: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
5: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: कौन बोल रहा है?
2: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
1: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
6: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
1: कौन बोल रहा है भैया?
2: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
1: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
7: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
2: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या
1: कोई बोल रहा है?
2: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल
1: रहा
2: हूँ, आप रमेश बोल रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
8: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
9: थैंक यू।
10: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
11: आप सुन रहे हैं पुरानी जींस, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

पोल्का डॉट्स, बाप रे, ये तो मुझे लगता है शर्मिला जी ने भी पॉपुलर किया है और मुमताज जी ने भी, हेमा मालिनी ने भी कई सारी फिल्मों में पोल्का डॉट्स पहने। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड पोल्का डॉट्स आज भी इतने क्यूट, इतने चिक, इतने सुंदर लगते हैं, इतने कूल लगते हैं रादर। और ये जो प्रिंट था ना, ये हर हीरोइन ने पॉपुलर किया था, फिर चाहे वो शर्मिला जी हो, हेमा मालिनी हो, नीतू सिंह हो या फिर मुमताज हो। So, आज ना उन्हीं फैशन स्टेटमेंट्स की बात हो रही है जो उस जमाने में आए और इस जमाने तक हम फॉलो करते हैं। वैसे वापस आओ, कौन सा हेयर स्टाइल था जो एक्चुअली में एक हीरोइन के नाम पे इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी हम सैलून जाकर के कहते हैं कि हमें ये वाला हेयर स्टाइल, इस हीरोइन का हेयर स्टाइल चाहिए। बताऊंगी वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स पे आप खुश रहे के साथ एंड टाइम जब आप और मैं बैठेंगे गाड़ी के शीशे नीचे करेंगे एंड वी विल हिट द हाईवे
1: हाईवे।
0: अच्छा एक बात बताऊं, आपके साथ ऐसा होता है आप किसी को अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते हो, जता नहीं पाते हो जब वो इंसान सामने होता है, और अगर वो इंसान सामने नहीं होता है, वो जैसे ही गायब होता है, तो एक्चुअली में फील होता है कि यार ये जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट बनना है हमारे लिए। लेकिन ये वाली फील आती है किसी के जाने के बाद, थोड़ी देर के लिए जब वो गायब होता है ना, तो न जाने क्यों होता है जिंदगी में। कमिंग अप यही गाना आपके लिए, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। मैं हूँ श्रेया, गुड नाइट।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: पुरानी जीन्स पे आप खुश रहे के साथ एंड टाइम जब आप और मैं बैठेंगे गाड़ी के शीशे नीचे करेंगे एंड वी विल हिट द हाईवे
1: हाईवे।
0: अच्छा एक बात बताऊं, आपके साथ ऐसा होता है आप किसी को अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते हो, जता नहीं पाते हो जब वो इंसान सामने होता है, और अगर वो इंसान सामने नहीं होता है, वो जैसे ही गायब होता है, तो एक्चुअली में फील होता है कि यार ये जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट बंदा है हमारे लिए। लेकिन ये वाली फील आती है किसी के जाने के बाद, थोड़ी देर के लिए जब वो गायब होता है ना, तो न जाने क्यों होता है जिंदगी में। कमिंग अप यही गाना आपके लिए ओनली ऑन पुरानी जीन्स। मैं हूँ श्रेया, गुड नाइट।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: Energy. Escava na puscava na sacabana. Rabala. Burga, burga. Na vida la burga. Energy, burga.
1: Hello.
2: Hi. Ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
3: विकी जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
1: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
3: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
1: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
3: हाँ जी,
1: हाँ बोलिए।
3: 33501।
1: अच्छा
3: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
1: हेलो,
3: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
4: हाय।
3: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
4: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास भी है।
3: धोबी से
4: पूछ लीजिए।
3: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
1: हेलो
3: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
5: ये बेल जा रही है।
3: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
1: अरे भाई, तो एक बात सुन, ये
3: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
1: किससे पूछे जा रहे हैं?
3: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
1: भाई क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है।
3: ये एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
1: मुझे बताना है सबको, थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह बचाने के थोड़ी ना होता है।
3: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते।
6: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
1: किसने दिया मेरा नंबर?
6: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
1: अरे मैं खुकड़ू को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, puscabana, sacabana. Gambana. Murga, murga. La virpa, la murga. Mirchi, murga.
1: Hello.
2: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
1: हाँ जी बोलिए।
2: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
1: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ। तो हिडन चार्जेस?
3: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
1: कौन बोल रही है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
1: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
4: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
1: हेलो कौन बोल रहा है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
1: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
3: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
1: हेलो मैडम।
2: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
1: कौन बोल रहा
2: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
1: अभी कोई और बोल रही थी।
2: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
1: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
5: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: कौन बोल रहा है?
2: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
1: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
6: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
1: कौन बोल रहा है भैया?
2: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
1: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
7: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
2: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या
1: कोई बोल रहा है?
2: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल
1: रहा हूँ
2: आपसे, रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आप सर फोन मत काटिएगा।
8: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
9: थैंक यू
10: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांट्स में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभाव पूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।

0: समय
1: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
2: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Discipline के मामले में हमेशा हमारे पास चॉइस होती है, फॉलो करना या इग्नोर करना। आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: की बात की और क्योंकि बुरी आदतों की बात की और कभी कभी डिसिप्लिन उसमें नहीं हो पाता, तो हाल फिलहाल में मैं एक कैब में बैठा था और सुबह सुबह का समय था, मेरे ख्याल से 4:30-5 बजे मुझे कहीं एयरपोर्ट जाना था। वो आ गया मुझे पिकअप करने, और ये मैंने कई कैब ड्राइवर्स ट्रक ड्राइवर्स के साथ देखा है, वो सुबह पहले गुटखा खा रहा था। तो मैंने जैसे मैं कैब में बैठा मुझे एक स्मेल आई, मैंने कहा सुबह पहले यार? वो कहता सर रात भर से चला रहा हूँ और इसके सिवा उपाय नहीं है, वरना नींद आ जाएगी मुझे, और कैब चलाते वक्त मुझे नींद आ जाए तो दिक्कत है, तो ये मैं चबाते रहता हूँ क्योंकि इससे मेरा दिमाग उस पे रहता है कि मैं सो नहीं सकता एक्सेट्रा। तो आप और मैं ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहाँ पे हमें पता है कि सही क्या है गलत क्या है, हम ये चॉइस ले पाते हैं, हम डिसिप्लिन हो पाते हैं, हम छोड़ भी पाते हैं, लेकिन जिसके पास ये चॉइस नहीं है, कैब ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, लंबे समय तक आपको सड़क पे नजर रखनी है, आप अपने आंखें वहां से नहीं हटा सकते, तो अक्सर जो बुरी आदतें हैं वो वहां उनको पता है ये खराब है।
4: अभी आपने कहा उनके पास चॉइस नहीं, और अभी आपने कहा उनको पता है वो खराब है।
3: हाँ, लेकिन क्योंकि वो कह रहे हैं क्योंकि मुझे ये काम करना है, एक्सीडेंट हो जाएगा।
4: हम ये नहीं कह सकते उनके पास चॉइस नहीं है।
3: अच्छा,
4: ये लाइन ही गलत है।
3: ठीक है, तो क्या करे ऐसा केस में वो?
4: आपको क्या लगता है कि जो रात को कैब ड्राइवर्स हैं या ट्रक ड्राइवर्स हैं, सब इनमें से किसी न किसी चीज का सेवन करते हैं?
3: शायद नहीं करते होंगे, लेकिन बहुत आसान तरीका है इसको काटने का।
4: मना, हाँ ठीक है, इट इज इजीली अवेलेबल एंड इट इज गिविंग यू समथिंग, इसीलिए तो हम करते हैं। एडिक्शन होता है इसलिए है क्योंकि वो आपको एक इंस्टेंट स्टिमुलेशन देता है। आपने कोई चीज ली और आपको इमीडिएटली कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट मिला, इसीलिए तो आप करते हैं ना, वो इजी है, इंस्टेंट है। लेकिन क्या सब करते हैं? क्या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है कि नहीं है?
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची लव।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: आप अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हो. आपके डिसीजंस ही आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं. आइए इसी सच को समझें.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहां पे शायद कहा गया कि 86% ऑफ ऑल ट्रक ड्राइवर्स जो लॉन्ग रूट पे चलाते हैं आर इन्वॉल्व्ड इन सम एडिक्शन ऑफ द अदर. 86% तो क्या है कि ऑलमोस्ट सभी कर रहे हैं. तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आज मुझे उन्हें बताना है या उनको किसी तरह से इन्फ्लुएंस करना है या हमारे माध्यम से उनको बताना है कि चलो अपनी लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लाओ, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी और 86% ऐसे आदतों में ऑलरेडी हैं, तो उनको हम क्या बता सकते हैं?
4: पर 86% करते हैं, पर 14% ऐसे हैं ना जो नहीं करते.
3: बिल्कुल.
4: तो

0: तुम अपने को क्या कह रहे हैं, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ये जब बार बार मन सुनता जाता है ना, चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है, तो बेचारा हो जाता है, विक्टिम हो जाता है। पहले तो हम विक्टिम नहीं है, हम विक्टिम नहीं है, हम अपने जीवन के मालिक हैं।
1: बिल्कुल,
0: अपने जीवन के तो है ना, दूसरे के नहीं हो सकते। आप अपने जीवन में क्या चूज करते हैं, मैं उसकी मालिक नहीं हूँ, पर मैं कम से कम अपने जीवन के तो मालिक हूँ ना। तो मैं अब मुझे ये डिसीजन लेना है कि मुझे उस 14% ब्रैकेट में फॉल करना है कि उस 86% ब्रैकेट में फॉल करना है। मेजोरिटी को फॉलो करना हमेशा इजी होता है।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची लव।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हर सिचुएशन में हमारे पास एक चॉइस होती है, रिएक्ट करने की या रिस्पॉन्ड करने की। आइए इसे जाने।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: शायद ये बहुत सिंपलिस्टिक तरीका है कहने का, मेजॉरिटी भेड़ चाल बहुत आसान है, लेकिन क्या होता है कभी कभी इंसान को पता ही नहीं होता। जब वो शुरुआत कर रहा होता है कोई भी चीज़ में, चाहे स्टॉक ट्रेडिंग में आए या म्यूजिक में आए, तो आप देखते हैं अच्छा ये वाला कर रहा है तो यही सही तरीका होगा, तो आप उसको वैसे फॉलो करने लगते हैं। आप इसलिए नहीं कर रहे होते कि आपको पता होता है ये सही है या गलत है, उस समय आपको पता ही नहीं होता।
4: इग्नोरेंस इज ब्लिस वाला हो जाता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
4: लेकिन देखो, अगर इग्नोरेंस ब्लिस भी है, सी दिस इज आल्सो समथिंग, इफ यू आर गेटिंग इनटू समथिंग वाइज, तो यही होगा कि आप फिगर आउट तो करें ना, कि अगर आप किसी चीज में, एज सिंपल एज दैट, आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो आप वहां पर फिगर आउट तो करेंगे ना कि उसके लॉज क्या हैं। वहां पर लेफ्ट साइड में ड्राइव करते हैं, राइट साइड में करते हैं, आपके जी मुझे पता ही नहीं था, हमारे देश में तो ऐसा होता था, तो हमने इस देश में भी ऐसा किया, तो भले आप कर लें, पेनल्टी तो आपको
3: भरनी पड़ेगी। अब पेनल्टी भरने की बारी आ गई, मुझे समझ में आ गया ये गलत है, मैं 86% में मैं फॉल करता हूँ, अब मुझे छोड़नी है वो आदत, और मेरे जो आवर्स हैं वो इतने लंबे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे अपने समय को भरना पड़ेगा। लॉन्ग लोनली आवर्स ऑन द रोड, 14 से 16 घंटे में ड्राइव कर रहा हूँ, उस समय मैं डिसिप्लिन को कैसे लाऊं अपनी जिंदगी में।
4: तो पहली चीज हो गई कि हमने मेजोरिटी को सिर्फ फॉलो किया, हमने उस चीज को जानने की भी कोशिश नहीं करी कि ये राइट है कि रॉन्ग है।
3: जी
4: ठीक है, मेजोरिटी अगर ऐसा कर भी रहे, फर्स्ट थिंग तो ये होनी चाहिए कि आप कोई भी चीज स्टार्ट करें उससे पहले आप फाइंड आउट करें आपकी हेल्थ के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके मन के लिए वो कितनी बेनिफिशियल है कि नहीं। चलो आपने नहीं किया, अब किसी पॉइंट पर आकर के आपको रियलाइज हुआ, जो आपने कहा कि अभी मैं अभी फाइन पड़ा तो पता चला गलत है, तो चलो वहां पर हम डिसीजन ले ले, वो कहते हैं ना जब उठे तब सवेरा।
3: बिल्कुल,
4: व्हेन यू नो बेटर यू डू बेटर। इग्नोरेंस भी क्राइम भी नहीं है, चलो ब्लिस है तो क्राइम भी नहीं है। अब आपको समझ में आ गया कि ये गलत है, अब आप शिफ्ट लाने के लिए विल पावर चाहिए। एक एक दिन अगर आप करते जाएंगे, जो हमने बातें करी कि हम दूसरा तरीका ढूंढे अपने को जागृत रखने का, एक तरीका है हम कोई तंबाकू खाते हैं, हम कुछ करते हैं, और क्या तरीका हो सकता है कि हम अपने को थोड़ा सा उठे रहे। हम एक हो सकता है हम थोड़ा म्यूजिक सुनते हैं, कई लोग रेडियो सुनते हैं, उनको रेडियो सुनते रहते हैं तो वो थोड़ा सा अवेक रहते हैं। ये भी जरूरी होता है कि जब हम ऐसे किसी प्रोफेशन में होते हैं जहाँ हमें रात भर गाड़ी चलानी है, तो उससे एक दिन पहले अच्छे से रेस्ट करना ये जरूरी है, क्योंकि हम सिर्फ गाड़ी नहीं चला रहे हैं, बहुतों की जीवन हमारे हाथ में है। इट इज दैट वन सेकेंड ना जिसमें गलती हो जाती है, और वो गलती फिर जीवन भर के रिग्रेट बन जाती है। होता तो एक ही सेकेंड है, आज सब कुछ ठीक होता है, अगले पल में सब कुछ गलत हो जाता है। तो पहले तो अगर आपका ऐसा कोई प्रोफेशन है कि आप गाड़ी चलाते हैं, जैसे हमने बात की डॉक्टर की, वो सर्जरी करता है, कोई मिलिट्री में है वो हमारे जीवन की रक्षा करता है, इन सब प्रोफेशन में जो जरूरी है अपना ध्यान रखना, चाहे वो एक ड्राइवर भी है, जरूरी है वो अच्छे से खाए, जरूरी है वो अच्छे से अपनी नींद पूरी करके सड़क पर गाड़ी चलाने आए, तो वैसे ही उससे गलती नहीं होगी। फिर भी अगर आपको लगता है लॉन्ग आवर्स हैं, कभी कभी ऐसा होने लगता है, तो ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट यूज करें जो डैमेजिंग तो नहीं है ना, ना आपके लिए डैमेज, जैसे म्यूजिक है, जैसे हो सकता है शॉर्ट ब्रेक लेना, आपने थोड़ा सा ड्राइव किया फिर आपने 10-15 मिनट्स का ब्रेक ले लिया, या हो सकता है आपका कोई को पैसेंजर है जिससे आप थोड़ी सी बातचीत करें, कई बार ड्राइवर कह भी देते हैं आप आगे बैठ जाओ, हम थोड़ी सी बात करते रहते हैं क्योंकि रात का समय है, लोनली है, हम थोड़ा बात करते रहेंगे तो मेरा भी, मैं अवेयर रहूंगा, मैं जागृत रहूंगा। कुछ भी ऐसा तरीका।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हर बात के लिए गिल्टी रहना जरूरी नहीं, कभी कभी सेल्फ फॉरगिवनेस भी डिसिप्लिन का हिस्सा होती है। आइए इसे समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: इसमें इतना घुस जाते हैं कि हम अपने आप पे इतना कुछ ले लेते हैं, हम अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट बना देते हैं कि मेरे को तो ये करना वो करना, हम अपने खुद का ख्याल रखना ही छोड़ देते हैं।
4: सिंपल है, सेल्फ फैमिली वर्क प्रायोरिटाइज करें इसको। क्या करते हैं, ज्यादा लोग इसको प्रायोरिटी देते हैं,
3: पहले दूसरों को ही प्रायोरिटी देते हैं, खुद
4: फैमिली
3: को नहीं देते,
4: को फिर वर्क को, बस इसको शिफ्ट करते हैं।
3: कभी कभी उल्टा होता है, पहले वर्क को फिर फैमिली को।
4: हाँ, वो भी हो जाता है आजकल, तो वो भी होने लगा है।
3: बिल्कुल,
4: क्योंकि ना फैमिली के लिए समय है ना खुद के लिए समय है, सारा समय कहाँ पर है। पर वो फिर वर्क प्लेस पर कैसे होते हैं, आपने देखा है जिनको सब सिर्फ वर्क ही चाहिए,
3: चिड़चिड़े हो जाते हैं।
4: फिर वो चिड़चिड़े होते हैं और वो सारा चिड़चिड़ापन कहाँ जाकर निकालते
3: हैं, घर पे भी निकलता है,
4: घर पर निकलता,
3: खुद पे भी निकलता है।
4: तो जिनसे सबसे ज्यादा प्यार है उनको क्या दे रहे हैं,
3: सबसे ज्यादा आप डांट फटकार।
4: ये भी एक रियलाइजेशन है, हम कहते हैं हम इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, हम घर में भी कई बार शोर मचाते हैं, हम इतनी मेहनत तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, वो कहते मुझे नहीं चाहिए।
3: बिल्कुल,
4: क्योंकि हमें लगता है कि उनको चीजें चाहिए, पर फैमिली को सिर्फ चीजें नहीं चाहिए ना। फैमिली माना क्या, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, सिर्फ चीजें नहीं, चीजें ठीक है, दैट इज अ नीड, वो भी जरूरी है, पर आप सोचे मैं चीजें से वो प्यार मिल जाएगा, चीजें से उनको खुशी मिल जाएंगी, तो एक बार बैठ करके बात कर ले उनसे कि उनको चीजें ज्यादा चाहिए,
3: समय चाहिए।
4: ये भी एक तरीका होता है गिल्ट को दूर करने का, जो लोग बहुत काम करते हैं ना फिर उनका अंदर में गिल्ट होता है, तो वो गिल्ट को खत्म करने के लिए वो क्या करते हैं, घर जाने से पहले 10 चीजें खरीद लो, 10 चीजें जाकर के बच्चे को देंगे। कभी कभी, आई एम नॉट सेइंग हर एक के साथ होता है, बट दैट्स आल्सो अ वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ योर गिल्ट। आपको गिल्ट है कि आप इतना समय नहीं दे पाए, आप उस इम्पोर्टेंट इवेंट में नहीं पहुंच पाए, आप उनसे बात नहीं कर पाए, और ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है, वंस इन अ वाइल एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, समझते हैं। या अगर आपका प्रोफेशन ही ऐसा है, समझो आप मिलिट्री में है तो भी वो समझते हैं, पर एक है आपके पास चॉइस थी पर आपने वर्क को प्रायोरिटाइज किया, आपने वो बैलेंस नहीं रखा, फिर आपको अंदर में गिल्ट होने लगता है। तो आप अपने गिल्ट को भरने के लिए कई बार क्या कहते हैं, ये चीज ले जाओ, ये खिलौना ले जाओ, ये क्या हम उसको देंगे तो वो क्या हो जाएंगे,
3: खुश हो जाएंगे। तो अक्सर कहते हैं कि तुम्हारी घड़ी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा समय चाहिए।
4: एब्सोल्युटली, वेरी ब्यूटिफुली सेड।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची लव।

Energy, it's hot. पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सेल्फ डिसिप्लिन की पावर ही वो स्ट्रेंथ है जो आपको कंसिस्टेंट और अनस्टॉपेबल बनाती है। आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: किताब है द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, उसे पीटर हॉलिंस ने लिखा है और बहुत खूबसूरत किताब है। मैं उसे पढ़ रहा था तो उसमें वो 5 मेजर रीजंस बताते हैं कि क्यों इंसान सेल्फ डिसिप्लिन या अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं ले पाता है। वो 5 रीजंस के पीछे वो 2 कारण बताता है कि ये 5 रीजंस तो हैं ही, लेकिन इसके पीछे 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि वो क्यों नहीं हो पाते हैं। बोलते हैं हम जो इंसान होते हैं आमतौर पर हम पेन को अवॉइड करना चाहते हैं और प्लेजर को गेन करना चाहते हैं, तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो ज़्यादातर हमारी ज़िंदगी, चाहे वो सुबह सोना हो, एक्सरसाइज ना करना हो, या थोड़ा मीठा खा लेते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, ये इन 2 फैक्टर्स के अराउंड ही होता है कि यार पेन अवॉइड करना है, कौन मेहनत करेगा, या इससे प्लेजर मिल रहा है। तो ये पेन और प्लेजर का जो गेम है इसको कैसे खेलें?
4: कम्फर्ट हम सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारी ग्रोथ कम्फर्ट से निकल कर है। जब भी हम कंफर्ट से बाहर आते हैं ना, बाद में हर एक रियलाइज करता है, कहते नहीं इट वाज वेरी गुड, लेटर आई रियलाइज्ड कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि मैंने ये सीखा, ये बेनिफिट हुआ। बट इस चीज को अंदर में भी हमें बिलीफ में डालना है दैट एवरी टाइम हम अपने कंफर्ट जोन को अगर हमें तोड़ना पड़ता है तो हम ग्रो करते हैं, पर हमें अच्छा नहीं लगता। जैसे आप शुरू से देखे, जैसे वो कैलकुलेटर आया या कभी कंप्यूटर आता है या जैसे अभी AI का है, तो एक बार एक फियर रहता है
3: बिल्कुल
4: कि पता नहीं क्या होगा, मेरी नौकरी चले जाएंगे या, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम रियलाइज करते हैं कि नहीं नहीं, ये तो अच्छा ही था। इस कंप्यूटर ने तो हमारा काम आसान कर दिया, स्मार्टफोन ने तो हमारा काम आसान कर दिया, बाद में हम रियलाइज करते हैं। पर उस चीज के लिए हमें अपने अंदर भी एक शिफ्ट लेकर आना पड़ता है। चेंज कई बार अच्छा नहीं लगता है, चेंज से हम लोग थोड़ा सा डरते हैं, हमें चेंज अच्छा नहीं लगता, पर चेंज हमारे को हमेशा बेटर करता है, माना हमें कंफर्ट जोन से निकलकर उसमें कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ भी होती है। सो इट्स बेसिकली, आप उसको पेन क्यों बोलते हैं, पेन इज वेरी सब्जेक्टिव ना। कोई चीज फॉर एग्जांपल अगर कोई कर रहा है, एज सिंपल एज वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो जरूरी नहीं है पेन से कर रहा है, वो खुशी से भी तो कर सकता है वो चीज।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची लव।

गगन घिरे बदरा, सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। भीरू या शाम कनाई, ले जाओ इसको घर, राधे ले जाओ इसको घर, राधे ले जाओ इसको घर। नंदराय आदेश मान कर चली राधिके ले माधव को, तट लीला निकुंज में राधा माधव की यह लीला, राधा माधव की लीला सर्वोत्तम हो।

भारत वर्ष की पुण्य धरा पर गंगा मैया के अवतरण की ये कथा गंगा जल की ही भांति पावन और मनभावन है। गंगा अवतरण की ये कथा न केवल कानों में रस घोलती है बल्कि आत्मा को भी तृप्त करती है। तो सुनिए कैसे हुआ पतित पावनी गंगा माँ का धरती पर

राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब कपिल मुनि के आश्रम में पाया गया तो राजा के 60,000 पुत्रों ने आश्रम में धावा बोल दिया। तब कपिल मुनि ने क्रोध में उन राजपुत्रों को भस्म कर दिया। इन राजपुत्रों की मुक्ति का एकमात्र उपाय था कि पुण्य सलिला गंगा मैया धरती पर उतरे और श्रापग्रस्त सभी राजपुत्रों को उनका दिव्य स्पर्श

राजा भगीरथ की कठिन तपस्या से ब्रह्मा ने धरती पर गंगा के अवतरण का वरदान दिया और ब्रह्मा के वरदान को भगवान शिव ने भी सिर माथे पर धारण किया। भगवान विष्णु के श्री चरणों का ये गंगा रूपी चरणामृत

0: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: नो पेन नो गेन सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि ग्रोथ का यूनिवर्सल ट्रूथ है। आइए समझते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: हमें बोला गया नो पेन नो गेन।
5: Somewhere I don't agree with this line. ये जो बात है ना, नो पेन नो गेन, तो माइंडसेट अंडर क्या हो गया है? आपको अगर कुछ पाना है
4: तो कुछ खोना तो पड़ेगा,
5: कुछ खोना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ये सब नहीं करेंगे तो शायद आप सफल नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है, आप एक जर्नी पर है। आप उस जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय करके भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उस जर्नी को ही तो एंजॉय करना ना, चाहे वो जर्नी में थोड़े उतार चढ़ाव भी है तो भी क्या हो गया, जर्नी को तो एंजॉय कर ही सकते हैं। ये एक माइंडसेट जो है ना कि बहुत मतलब क्या स्ट्रगल है, वही काम आप कर रहे हैं वो आप खुशी से भी तो कर सकते हैं। लेकिन वो खुशी से करने का मतलब क्या है, यू टेल योरसेल्फ कि नहीं, आई हैव टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू इट विलिंगली एंड आई एम एंजॉयिंग दिस। अब दूसरा है, इतने बजे उठना पड़ता है, फिर मुझे भागना पड़ता है, क्या मेरी लाइफ है, क्या ये ट्रेन के धक्के हैं, क्या आपकी खुशी और वो जो है ना, वो बेसिकली आपके अंदर की थिंकिंग के कारण हो रही है। काम वही है, वही आप रोज ट्रेन में आ रहे हैं, पर रोज आप कह सकते हैं कितने धक्के हैं, कैसे लोग हैं, कैसा क्या मेरी लाइफ ही क्या है सर।
4: आप कह रहे हैं कि नो पेन नो गेन से आप अग्री नहीं करती, लेकिन ज्यादातर जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो जिसने नथिंग टू समथिंग बनाया हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो एथलीट ओलंपियड कुछ भी हो, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं जिनकी कहानियों से हम इंस्पायर होते हैं, वो ज्यादातर आप देखिए बहुत तकलीफों से गुजरे होते हैं, बहुत मुश्किलों से आप निकले होते हैं, तब जाके कहानी बनती है।
5: मुश्किल से गुजरना एक अलग चीज है, लेकिन कोई मुश्किल से गुजरा है तो वो दुखी होगा क्या?
4: नहीं।
5: So that's it. मुश्किल का कोई ऐसी बात नहीं है, आप मुश्किलों से गुजर रहे हैं वो तो चाहे सफल व्यक्ति है या कोई भी है, मुश्किल है तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ ना, क्योंकि आप वन इज प्रॉब्लम फ्री लाइफ, वन इज पेन फ्री लाइफ।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: याद रखिए, हर मोड पर आपके पास चॉइस होती है और वही चॉइस आपकी लाइफ की क्वालिटी डिसाइड करती है। आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: बताइए सिस्टर श्रेया कि तो फिर ये कभी मान ले कि जिंदगी में अगर प्रॉब्लम्स आएंगी तो शायद वो आपको डिसिप्लिन का रास्ता दिखा देती हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत एक रिपीट फैक्टर देखने को लग रहा है कि प्रॉब्लम लीड यू टू अ सोल्यूशन। कभी कभी डिसिप्लिन बहुत लोगों की जिंदगी में नहीं होती है और उनकी जिंदगी अचानक चेंज होती है क्योंकि कोई प्रॉब्लम आ गई, आपदा आ गई, लाइफ चेंजिंग इवेंट हो गई, या फियर से आता है, फियर ऑफ परफॉर्मेंस। तब जाके आपको लगता है अगर मैं ये नहीं करूंगा तो ऐसी जिंदगी तो मेरी होगी ही नहीं। ये भी एक तरीका है?
4: तरीके तो कई हैं। एक होता है कि आप कॉन्शियसली चूज करते हैं मुझे डिसिप्लिन लाइफ जीनी है क्योंकि उसमें बेनिफिट है। दूसरा होता है कि जब आप नहीं जीते फिर वो कोई चैलेंज, जैसे आप उसकी बात कर रहे थे जो उबर ड्राइवर है वो तंबाकू खाता है, अब समझो किसी दिन उसको कोई बड़ी बात हो गई, होने में देर थोड़ी ना लगती है। आप इन सब चीज़ों का कोई ना कोई इल इफेक्ट तो है ही ना। अब वो किसी दिन जाता है उसको पता चलता है कि कैंसर हो गया, भगवान करे कभी कुछ नहीं हो, पर हो ही जाता है ना। अब क्या होगा, वो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा?
3: बिल्कुल छोड़ेगा।
4: डिसिप्लिन लाइफ, तो फिर हम क्या कहेंगे, ये बात आई ना तो मैंने अपने लाइफ को डिसिप्लिन बनाया। बना पहले भी सकते थे पर हम में से मेजोरिटी कई बार क्या करते हैं, उसको खींचते जाते हैं, स्ट्रेच करते जाते हैं, फिर वो
3: समथिंग हैपेंस।
4: दैट इज व्हाई इन स्पिरिचुअलिटी यू ऑलवेज से दैट पेन लीड्स टू अवेकनिंग। कई बार क्या होता है, आप जब खुद नहीं सीखते तो फिर वो दर्द आपको सिखाने के निमित्त बन जाता है, क्योंकि अब वो समझो आपको कोई बीमारी हो गई, अब आप फर्म हो जाते हैं। आप पहले भी कर सकते थे लेकिन अब आप भी बहुत फर्म हो जाते हैं, आपका परिवार वाले भी बहुत फर्म हो जाते हैं। वो कहते हैं हमें कम पैसा चलेगा, आप इस चीज को टच नहीं करना। हम आपके बिना नहीं रह सकते, हम कम चीजों के बिना रह सकते हैं, हम कम धन के साथ रह सकते हैं पर हम आपके बिना नहीं रह सकते। अब वो विल पावर कहां से आ गई?
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची लव।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग माय समोसा लवर्स, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब वो शो शुरू हो चुका है जो तुम्हारी चाय से ज्यादा कड़क और कॉफी से ज्यादा गर्मा गर्म है और ब्रेकफास्ट से ज्यादा क्रिस्पी है। आज का मूड बड़ा सिंपल है, सर्वाइव मंडे विदाउट कंप्लेनिंग। तो फिलहाल इफ यू ड्राइविंग टू वर्क, प्रिटेंडिंग टू वर्क या फिर एक्चुअली वर्किंग, मैं बोले तो प्रिसिला तुम्हारे साथ में हूँ एंड आई सी यू दोस्त। आज का शो शुरू हो चुका है जहाँ पर बॉलीवुड के देसी बीट्स तो है, साथ साथ में तुम्हें ढेर सारी स्पाइसी स्टोरीज मिलने वाली है, अराउंड द वर्ल्ड क्या चल रहा है ये सब कुछ पता होने वाला है। अभी के लिए मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virtua la burka.
1: Mirchi, burka. Hello?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस।
1: कौन बोल रहा है
2: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रही है?
2: क्या मजाक चल रहा है ये? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बन गए। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my desi people. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings. And अब हम बातें करने वाले हैं आज के दिन के बारे में. लेकिन रिवाइंड करके 1812 में the waltz dance entered English ballrooms. मतलब before reels and शादी की choreography, people were already spinning dramatically for attention. 1857 में Indian rebels seized Delhi during an uprising against the British. Fast forward to 1926, humans completed the first flight over the North Pole. Imagine explaining that to your nanny in 1926. And 1928 mein our very own NY got its first television station. Aur tab se lekar aaj tak log TV se chipke hue hain. 1949 mein the Berlin blockade ended, giving Europe a huge sigh of relief after tense time. And then India made history in 1998 with the Pokhran 2 nuclear tests. And इसीलिए आज का दिन इंडिया में सेलिब्रेट होता है एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे. ऑल्सो आज के दिन वो लोग अपनी मम्मा को कॉल कर सकते हैं जिन्होंने कम्प्लीटली कल कॉल करना अवॉइड किया है. यस्टरडे वॉज मदर्स डे एंड यू कैन शेयर विद मी तुमने अपनी मम्मा का दिन स्पेशल कैसे बनाया. मुझे डीएम करो इंस्टाग्राम और एक्स पर. मेरा हैंडल है Mirchi Priz, दैट इज MIRCHIPRIS. और व्हाट्सएप कर सकते हो 9033 Mirchi पर, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: मिर्ची फ्रेश माल,
2: देसी स्वैग और हाई एनर्जी डांस वाइब के साथ सुनो, वे आ करवा दो जी।

0: इस गाने को गाया है मीका सिंह और असीस कौर ने, म्यूजिक दिया है व्हाइट नॉइस कलेक्टिव्स ने और लिरिक्स लिखे हैं वायु ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से, विया करवा दो जी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग माई फैबुलस पीपल, दिस इज योर गर्ल प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब तुम्हारी चाय से ज्यादा स्ट्रॉन्ग टी मेरे पास है। सो टुडेज क्यूटेस्ट अपडेट कम्स स्ट्रेट फ्रॉम कैटरीना कैफ, हु जस्ट सेलिब्रेटेड हर वेरी फर्स्ट मदर्स डे आफ्टर वेलकमिंग बेबी बॉय विहान। लास्ट नवम्बर में उन्होंने हबी विकी कौशल के साथ ये अनाउंसमेंट किया था, एंड ऑनेस्टली द इंटरनेट कलेक्टिवली वेंट ऑ। कैटरीना शेयर्ड द सुपर स्वीट ग्लिम्स ऑफ हर मदर्स डे सरप्राइज, जिसमें फ्लावर्स थे, हैंड रिटन नोट था एंड प्योर सॉफ्टी एनर्जी थी। द नोट सेड, हैप्पी फर्स्ट मदर्स डे माई लव, साइंड लव विहान एंड पापा कौशल। एक्सक्यूज मी, पापा कौशल? सर दिस इज अडोरेबल बट ऑल्सो वेरी डेंजरस। एक्सपेक्टेशंस फॉर मेन आर नाउ एट एन ऑल टाइम हाई। समवेयर अ गाय जस्ट फॉरवर्डेड HMD टेक्स्ट एंड थॉट ही डिड इनफ फॉर मदर्स डे। लेकिन ऑनेस्टली यार, ऐसे टाइनी होलसम मोमेंट से ही लाइफ और अच्छी बनती, स्पेशली फॉर ऑल द पीपल हु आर लिविंग अवे फ्रॉम द फैमिली इन द US। एक क्यूट मैसेज से घर का माहौल सडनली चेंज हो जाता है। लेट मी नो वो क्यूट मैसेज कौन भेजता है तुम्हें, या तुम किसको वैसे क्यूट मैसेजेस भेजते हो। DM करो मुझे इंस्टा और एक्स पे, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, क्योंकि क्यूट मैसेज तो मैं भी डिजर्व करती हूँ, राइट। और व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: यार कभी कभी ना ये वेदर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, जस्ट लाइक माय एक्स। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब वेदर का हाल चाल पता कर लेते हैं। स्वेटर वेदर अलर्ट है टुडे। राइट नाउ द टेम्परेचर इज अराउंड 49 डिग्रीज फारेनहाइट एंड इट्स मोस्टली क्लाउडी, लेकिन विंड जो है उसकी बदौलत 46 डिग्रीज फील हो रहा है हमें। क्लाउड्स आर स्टिकिंग अराउंड ऑल डे लाइक दैट वन रिलेटिव हु सेज बस 5 मिनट में निकलते हैं एंड देन स्टे स्टिल डिनर। टुडेज हाई इज ओनली टचिंग 62 डिग्री Fahrenheit, which is way lower than yesterday's random overachiever high, which was 75 degrees Fahrenheit. Yesterday काफी मायावी की energy थी and today it's giving Seattle. Good news though, there is barely any rain drama. Last 24 hours में we saw only 1 millimeter of rain and next 24 hours में zero precipitation है. So today be layer का player again, hot chai and breakfast के साथ pretend that you are working. ढेर सारा पानी पियो, keep yourself hydrated and wear your sun protection SPF 50 प्लस प्लस प्लस के साथ में। ऑफ कोर्स मिर्ची को ट्यून्ड इन रखो क्योंकि मैं बोले तो प्रिसिला तुम्हारे साथ में हो। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग माय दोस्त, मैं हूं तुम्हारी होस्ट, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स, मेरा नाम है प्रिसिला। सबसे पहले अ पावरफुल मोमेंट फ्रॉम ट्रिनिडाड। ड्यूरिंग एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर्स विजिट, ट्रिनिडाड्स इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर कमला प्रसाद बिसेसर स्पोक अबाउट हाउ इंडियंस देयर आर स्टिल समटाइम्स कॉल्ड कूलीज, बट शी प्राउडली सेड टुडे अ लिटिल कूली गर्ल इज नाउ प्राइम मिनिस्टर। एंड नंबर टू पर तमिल सुपरस्टार विजय हैड अ स्लाइटली फिल्मी मोमेंट ड्यूरिंग हिज चीफ मिनिस्टर ओथ सेरेमनी इन तमिलनाडु। अपेरेंटली ही वेंट अ लिटिल ऑफ स्क्रिप्ट व्हाइल taking the oath and the governor had to politely remind him about the official protocol. Arey bhai, actor instincts kicked in. Once a hero, always dramatic timing. Meanwhile, social media also went on full detective mode after actress Trisha attended the ceremony. Internet people seriously need hobbies and hydration. And number three per, a sad one coming in from the US. Indian techie Chiranjeevi Kola sadly passed away after battling valley fever, which is a fungal lung infection linked to spores found in soil, especially in parts of California. He was just 37 years old. That's a reminder to really not ignore persistent health symptoms. Sending prayers and strength to his loved ones. And that's it for your Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein. Connect karo mujhse Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that is 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. La viva la murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hi. Ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
4: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए।
4: 33501।
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
5: हाय।
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए।
4: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
6: ये बेल जा रही है।
4: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई तो एक बात सुन, ये आपके हो
4: पास
2: क्या है?
4: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
2: किससे पूछे जा रहे हैं?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
2: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
4: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह बचाने के लिए थोड़ी ना आता है।
4: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
7: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
2: किसने दिया मेरा नंबर?
7: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
2: अरे मैं खुकड़ू को।
8: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my Mirchi family. This is your girl Priscilla with you on Mirchi Mornings. And now, chai se zyada garma garam tea mere paas hai. So, Mumbai Indians recently tried to calm Twitter down. Rumors were flying around about a possible rift between MI and Captain Hardik Pandya after he was missing from training sessions. But MI head coach Mahela Jayawardene said, "Relax, boys. Apparently, Hardik's dealing with a back issue and the medical team didn't want to risk pushing him too hard. He hasn't been training for the last few days and they are monitoring him day by day. Ab aise aa rahe the dance karenge ab apni girlfriend ke saath to yahi hoga, right? Hopefully, Hardik recovers soon because IPL without drama is impossible. But IPL without Hardik? That's like biryani without masala. And speaking of masala, jo hamari life mein sirf hamari mamma add kar sakti hai. Aur bhai, kal मदर्स डे था एंड शाउट आउट टू तनिष्क. दिस मदर्स डे वो लेकर आए हैं तुम्हारे लिए 20% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड ऑन मेकिंग चार्जेस ऑफ गोल्ड ज्वेलरी प्लस 0% डिडक्शन ऑन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड. तो अगर तुम्हारी मम्मी को 18 कैरेट से अबव ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज कराना है तो मदर्स डे के सेलिब्रेशन में लेकर जाओ उनको तनिष्क पर. वहां पर जाकर गोल्ड एक्सचेंज करा सकते हैं विदाउट एनी डिडक्शन. ऑफकोर्स टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है और अभी आने वाले एमर्जी दर बैंगर्स ओनली फॉर यू. मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में. कनेक्ट करो मुझसे मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Okay, imagine being born on the same day as Sabrina Carpenter. मतलब योर बर्थडे ऑलरेडी कम्स विद द मेन कैरेक्टर एनर्जी. गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज योर बर्थडे शाउट आउट. सो आज अगर तुम्हारा बर्थडे है तो तुम किसके साथ शेयर करो? सबसे पहले सबरीना कार्पेंटर हु इज टर्निंग 26 टुडे, एंड देन वी हैव गॉट एक्ट्रेस लाना कॉन्डोर, एंड देन शाउट आउट टू लेजेंडरी एक्ट्रेस शोरे अगडाशलू. फ्रॉम द देसी साइड वी हैव गॉट एक्ट्रेस अदा शर्मा, पंजाबी सुपरस्टार एमी वर्क एंड सिंगर एक्टर अमरिंदर गिल, जिनका आज हैप्पी वाला बर्थडे है. मतलब आज के दिन टैलेंट, ड्रामा, म्यूजिक, मस्ती, स्वैग सब कुछ है, जस्ट लाइक मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड कैन वी टॉक अबाउट हाउ बर्थडे पीपल ऑलवेज एक्ट शॉक्ड व्हेन एवरीवन सिंग्स फॉर देम? लाइक ब्रो, यू पोस्टेड काउंटडाउन स्टोरीज फॉर 3 weeks. वी वर प्रिपेयर्ड. सो व्हेदर सेलिब्रेटिंग विद केक एंड चाय एंड अ ग्रैंड पार्टी और जस्ट सर्वाइविंग एडल्टहुड विद वन समोसा एट अ टाइम, टुडे इज योर डे. ओके, सो ईट दैट केक, इग्नोर द कैलोरीज एंड ऑफ कोर्स सुनते रहो मिर्ची, मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ मिर्ची मॉर्निंग्स पर बने हुए हो तुम. एंड अभी जाकर इंस्टाग्राम और एक्स पर मुझसे कनेक्ट करो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. अभी चलाते हैं मिर्ची दैट बैंगर्स तुम्हारे लिए. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में and it's time for सोना एंड चांदी का रेट अपडेट only on Mirchi Mornings.
1: Raj Jose wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,700 per troy ounce. $4,700 per troy ounce के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं. आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट, 12 इंस्टॉलमेंट में बिना किसी हिडन फी के 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड राज ज्वेल्स की टीम के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए घर लेके जाएं और 12 किश्तों में पैसे दें. कैसे? आइए राज ज्वेल्स के साथ रिस्पॉन्सिबली गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
0: एंड देयर यू हैव इट, एक्सक्लूसिव गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट मिर्ची मॉर्निंग्स पर तुमने सुना. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल मिर्ची तार गानों की बारी है. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La birba, la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा?
3: रमेश बोल रहा हूँ सर।
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है इसमें, कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर इसमें।
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
2: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
2: कोई बोल रहा
3: है? कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, अब मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
10: थैंक यू।
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: देखो 3 बजे रात को ना मैं अपनी लाइफ को जब फिक्स करने का सोचती हूँ तब मैं सितारों के बारे में जरूर सोचती हूँ, और वो सितारों के बारे में जो मैं सोचती हूँ अभी लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में।
2: मिर्ची राशि जोन
1: इरीज यानी मेष राशि, केयरफुल व्हाट यू विश फॉर टुडे, ओके? यूनिवर्स इज इन फाइन टेक इट देन वाला मोड, डोंट मेक इम्पल्सिव चेंजेस टुडे। आज का लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 19। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, दैट थिंग स्ट्रेसिंग यू आउट Today, suddenly it will make sense and you'll wonder why you lost sleep over something like that. Classic overthinking behavior. Lucky color tumhara hai cinnamon brown. Lucky number is 4. Gemini yani Mithun Rashi. Positive people are entering your vibe today. Protect this energy like aunties protect their secret biryani recipes. Lucky color is lemon yellow. Lucky number is 27. Cancer yani Kirk Rashi. Sudden changes ahead but relax. This is glow up energy, not chaos energy. Trust the process even if it arrives wearing Crocs. Lucky color is cream color. Lucky number is 11. Leo yani ki Sinha Rashi. Work life looking spicy today. Somebody finally notices your efforts. Matlab validation is loading. Lucky color for you is orange. Lucky number is 33. Virgo yani Kanya Rashi. Somebody stubborn may annoy you today, but honestly, don't waste premium emotional bandwidth on basic nonsense. Focus on your own magic, sweetie. Lucky color is sage green. Lucky number is 8. And that's it for first 6 Rashis in Rashi Zone number 1. Baki bachi 6 Rashiyon ko lekar aati hu thodi si der mein. Tab tak tum suno ye Mirchi Dar Bangers and jaakar mujhe follow karo Instagram aur X par mera handle hai Mirchi Pris and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब
3: मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, my Mirchi family. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. अब बारी है बाकी बची छह राशियों की. राशि जोन नंबर टू.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: लीब्रा यानी तुला राशि. टुडे लक में रैंडमली फाइंड यू. कॉस्मिक कैशबैक ऑफर है आज. यूनिवर्स नोटिस्ड योर गुड कर्मा एंड सेड कीप द रिसीट. लकी कलर फॉर यू इज रोज कलर. लकी नंबर 22. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि. पीपल मे डाउट योर प्लान बट योर कॉन्फिडेंस टुडे इज स्ट्रॉन्गर देन योर शाय. कीप पुशिंग. लकी कलर इज क्रिम्सन रेड. लकी नंबर 16. सैजिटेरियस यानी धनु राशि. रिस्क लेने का मूड है. ऑनेस्टली इट मे एक्चुअली वर्क आउट फॉर यू. व्हाइल अदर्स हेजिटेट you are already halfway to success with snacks pack. Lucky color is indigo. Lucky number is 41. Capricorn yani makar rashi. Stay sharp with money matters today. Not everyone deserves blind trust, especially people saying bro. Quick investment opportunity. Run. Lucky color is charcoal gray. Lucky number is 6. Aquarius yani kumbh rashi. Unexpected twists aane wale hain and weirdly you will enjoy them. Tiny chaos is exciting until it becomes group project energy. So balance karo, okay? Lucky color for you is turquoise. Lucky number is 29. Pisces yani mean rashi. Time to let go of habits draining your energy. New week, new vibe, new you and less nonsense. Emotional decluttering is the real self-care. Lucky color is lavender. Lucky number is 14. And that's it for Mirchi Rashi Zone number 2. Mere yani ki Priscilla ke saath tum ho Mirchi Mornings par. Abhi jaldi se jao Instagram aur X par. Mujhe follow karo. Mirchi Pris is my handle name. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Abhi Mirchi, there are bangers coming up your way. Stay tuned and stay hot.

0: Mornings. Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग माय दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। अब कर्टन डाउन करने का टाइम आ चुका है, लेकिन जाते जाते तुम्हें एक सीरियस अपडेट देकर जाती हूँ। अ नोरो वायरस आउटब्रेक रिपोर्टेडली अफेक्टेड 115 पीपल ऑन बोर्ड द कैरेबियन प्रिंसेस क्रूज शिप। दिस इंक्लूड्स बोथ पैसेंजर्स एंड क्रू ऑन दिस 30-night ट्रिप with more than 4,000 people on board. According to the US Centers for Disease Control, the sick passengers were isolated as precautions kicked in. And honestly, desi log on the cruise are built differently. Somewhere one Indian auntie probably said, "Thoda sa kaada pee lo yaar, you'll be fine." Lekin jokes apart, stomach viruses spread super fast in closed spaces like cruise ships, so hygiene really matters. अगर तुम प्लान कर रहे हो कहीं ऐसी जगह पर जाने का तो वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, स्टे हाइड्रेटेड एंड मेबी डोंट ट्रस्ट दैट सस्पिशियस बूफे पोटैटो सैलड दैट्स बीन सिटिंग देयर लुकिंग इमोशनली टायर्ड। ऑल्सो रिसेंटली अनदर क्रूज रिपोर्टेडली फेस्ड अ हंटर वायरस सिचुएशन which sadly turned serious. So if you're planning vacation mode this summer, just pack smart, stay informed, and maybe carry enough sanitizer to survive both germs and airplane tray tables. And with that, my beautiful people, aaj ka Mirchi Mornings has come to an end. Thank you for hanging out with me through the gossip, giggles and weather mood swings. Milenge tumhe kal, same time, same place, same frequency. Tab tak ke liye Priscilla says tada bye-bye. Jaakar jaldi se mujhe follow karo. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X, and WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, that's 9033647244. फिलहाल stay tuned and stay hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये दोनों एक्टर्स ना ऑलरेडी साउथ में बहुत बड़े स्टार्स थे, लेकिन उन्हें लगता था कि शायद हिंदी इंडस्ट्री में वो इतना बड़ा मार्क नहीं बना पाएंगे। पुरानी जीन्स में हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया। और आज मैं जिस फिल्म की बात कर रही हूँ ना, वो फिल्म मैं एक्चुअली मैं देखना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि उस फिल्म को देखने के बाद ना, वो कहते हैं हैंगओवर होता है, एक्चुअली मैं इस फिल्म को देखने के बाद ना मेरा मूड ऑफ होता है। तो जब भी ये फिल्म बहुत सारे यू नो चैनल्स पे आती रहती है, आई ट्राई नॉट टू वॉच दिस मास्टरपीस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सदमा। कमल हसन और श्रीदेवी जी ऑलरेडी साउथ के बहुत बड़े एक्टर्स थे, लेकिन हिंदी फिल्म में दोनों ने एक साथ पहली बार इसी फिल्म से काम किया था। आज इसी फिल्म की बातें होंगी श्रेया के साथ, एंड ऑफकोर्स सदमा के बहुत खूबसूरत गाने। तो बस कहीं भी मत जाना, कम बैक राइट हियर ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची इसका बाना उसका बाना सका बाना मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो,
3: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस,
2: कौन बोल रहा है
3: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
2: क्या मजाक चल रही है?
3: क्या मजाक चल रहा है? सर, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर, क्या हाल चाल है आपके? सर, हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर, कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए, इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
4: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बड़े। और सर, मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

गुलशन ग्रोवर तो फिल्म की सिर्फ शूटिंग देखने गए थे, उन्हें क्या पता था कि उन्हें इस फिल्म का इतना इम्पोर्टेंट रोल भी मिल जाएगा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और आज बात हो रही है फिल्म सदमा की। एक ऐसी फिल्म जिसका क्लाइमैक्स देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी फिल्म जिसको मैं ना अगर किसी भी चैनल पे आ रही होती है मैं देख नहीं पाती हूँ। मतलब मुझे पता होता है कि इसका क्लाइमैक्स देख करके ना मेरा मूड एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ डेज खराब रहेगा। हाँ जी, सो सदमा में गुलशन ग्रोवर विलन का रोल करते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनको कभी इस रोल के लिए अप्रोच नहीं किया गया था। ये तो बाय एक्सीडेंट था कि उनको ये रोल मिल गया। अब हुआ ये कि अनिल कपूर ऑलरेडी एक कन्नड़ मूवी के लिए शूटिंग कर रहे होते हैं और सदमा की शूटिंग ना वहीं कहीं उनके ही सेट के आसपास होती है, तो अनिल कपूर श्रीदेवी से मिलने चले गए थे वहां पर। जब वहां गए तो भाई फिल्म के जो कैमरामैन थे जिनका नाम था बालू महेंद्र, उन्होंने गुलशन ग्रोवर को देख करके अनिल कपूर से कहा कि अपने दोस्त से पूछो क्या वो इस फिल्म में विलेन का रोल करेगा। और सोचिए, अनिल कपूर ने जैसे ही पूछा, गुलशन ग्रोवर तो उस समय उनके पास खास काम नहीं था, उन्होंने झट से हाँ कह दी, एंड दैट वॉज हाउ ही लैंडेड इन द रोल। पुरानी जीन्स पे सदमा के गाने होंगे और सदमा की बातें विद मी श्रेया। कम बैक राइट हियर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट गाना।

0: only on Radio Mirchi New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

यही फिल्म कमल हसन और श्रीदेवी जी ने पहले तमिल में की थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। सो ओरिजिनली दिस फिल्म वाज मेड इन तमिल, उसके बाद इसको हिंदी वर्जन में बनाया गया, टेकिंग अगेन द सेम एक्टर्स श्रीदेवी एंड कमल हसन। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा। लेकिन आपको पता है, हिंदी वर्जन बनाते समय श्रीदेवी काफी नाराज थी, और वो भी खुद से। उनको लगा कि तमिल वर्जन में ना वो और कमल हसन बहुत सारे सीन्स को इम्प्रूव कर पा रहे थे बिकॉज दे अंडरस्टूड द लैंग्वेज, लेकिन हिंदी क्योंकि श्रीदेवी की मदर टंग नहीं थी, उनको बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रही थी, तो श्रीदेवी सेट के हम बहुत सारे सीन्स को ना इम्प्रोवाइज नहीं कर पाए। जैसे डायरेक्टर बोलते गए हम बस वही करते गए, लेकिन अगर जैसा डायरेक्टर ने कहा सिर्फ उतना किया तो भी क्या खूबसूरत किया। सदमा रिमेन्स वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स ऑफ श्रीदेवी जी। मतलब इस फिल्म के बाद ना, अगर आप जब ये फिल्म देख लोगे तो आपको लगेगा कि श्रीदेवी कितनी मंझी हुई कलाकार थी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, इस फिल्म की बातें और गाने चलते रहेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

द डर्टी पिक्चर विद्या बालन की याद है आपको? ये किस पे बनी थी? साउथ की सेंसेशनल एक्ट्रेस विद्या बालन पे। अब ये साउथ की एक्ट्रेस यानी सिल्क स्मिता उस टाइम पे एक्सट्रीमली पॉपुलर थी और क्राउड भर भर के जाता था सिनेमा हॉल में इनकी फिल्में देखने के लिए। तो भाई जब हिंदी फिल्म बना रहे थे डायरेक्टर बालू महेंद्र, तो उनको लगा कि उन्हें अब सिल्क स्मिता को ना हिंदी फिल्मों वालों से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, हिंदी फिल्म ऑडियंस को भी दिखाना चाहिए। तो ही वांटेड टू शो समथिंग सेंसेशनल बिटवीन द यू नो स्टोरी ऑफ कमल हासन एंड श्रीदेवी जी। सो उन्होंने ना साउथ की इंडस्ट्री की ये फैसिनेटिंग यंग गर्ल सिल्क स्मिता को लेकर के आए। सो इनका तमिल वर्जन वाली जो फिल्म थी उसमें तो बहुत ही अच्छा काम किया, और उसके बाद हिंदी फिल्म में जब वो लेकर के आए, दैट वाज हर इंट्रोडक्शन, सिल्क स्मिता का इंट्रोडक्शन टू हिंदी ऑडियंस। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी वापस।

0: Radio Mitri, New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi, It's Hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

इस फिल्म से एज म्यूजिक कंपोजर अपनी शुरुआत की थी इलैयाराजा जी ने, और इसी फिल्म से अपना डेब्यू इलैयाराजा के असिस्टेंट बन करके पता है किसने किया था? दी ए आर रहमान। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा, यानी श्रीदेवी जी और कमल हासन की फिल्म। इसी फिल्म से ये दोनों द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स म्यूजिक कंपोजर्स हमें मिले थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, इस फिल्म की बातें और गाने बहुत सारे आज लेकर के आई हूँ, तो बस कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सका बाना मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हाय, ये कॉल बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
5: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
3: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
5: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
3: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
5: हाँ जी,
3: हाँ बोलिए।
5: 33501।
3: अच्छा
5: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
3: हेलो,
5: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
6: हाय।
5: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
6: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
5: धोबी से
6: पूछ लीजिए।
5: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
3: हेलो
5: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
7: ये बेल जा रही है।
5: हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
3: अरे भाई तू एक बात सुन, ये आपके हो
5: पास
3: गया है।
5: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501।
3: हेलो,
5: हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
3: किस से पूछे जा रहे हैं?
5: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
3: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
5: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
3: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह बचाने के थोड़ी ना आता है।
5: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
7: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
3: किसने दिया मेरा नंबर?
7: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
3: अरे मैं खुकड़ू को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और जब बात हो फिल्म सदमा की तो ना एक जगह चुप हो जाना चाहिए क्योंकि गाना ये आ रहा है। एंड इस गाने से, यानी इस फिल्म के गानों से इलैयाराजा जी ने अपना डेब्यू किया था, और उनके असिस्टेंट पता है कौन थे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इट वाज नन अदर देन एआर रहमान साहब। इतना खूबसूरत गाना ये सुदास जी ने गाया। कमिंग ओवर राइट नेक्स्ट, सुरमई अखियों। ये गाना जो है श्रीदेवी को देख करके कमल हसन गाते हैं, और श्रीदेवी के चेहरे पे इतना इनोसेंस, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ये गाना शुरुआत से इन्जॉय करो। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

बालू महेंद्र ने जब इस फिल्म का क्लाइमैक्स लिखा था तो उन्होंने बहुत सिंपल सा लिखा था कि कमल हासन श्रीदेवी को बस देख रहे हैं, ऐसी आंखों से देख रहे हैं, ऐसे इमोशंस के साथ देख रहे हैं कि बस अब तो मत जाना। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा, जिसका क्लाइमैक्स ओ गॉड रोंगटे खड़े कर देता है। और इसीलिए ना जब भी ये फिल्म आती है किसी भी चैनल पे तो मैं देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि इसका क्लाइमैक्स तो मुझे 2-3 दिन तक मेरे दिल में एकदम जगह करके रहेगा एंड यू नो आई विल फील वेरी वेरी सैड। सो बालू महेंद्र ने तो कोशिश की थी कि बस कमल हासन सिर्फ एक ग्लिम्स दे रहे हैं श्रीदेवी को, उनकी आंखों में है कि तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाओ, और श्रीदेवी चलती जा रही है। लेकिन इट वॉज कमल हासन हू सेड कि नहीं, ऑडियंसेस के लिए ये सिर्फ एक ग्लिम्स, एक एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ और होना चाहिए। एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन कमल हासन सेड कि मैं इस रोल, इस पूरे सीन को ना इम्प्रोवाइज करना चाहता हूँ। तो जो वो ट्रेन में बैठी हैं श्रीदेवी और कमल हासन उनको उछल उछल के दिखा रहे हैं कि शैतानियाँ हम लोग करते थे, ये मस्ती हम लोग करते थे, और श्रीदेवी उनको यू नो कुछ खाने को देती हैं कि अरे भाई लगता है यू नो ही इज़ लॉस्ट हिज माइंड, इसको कुछ खाने को दे दें, ये सब कमल हासन ने सोचा था। और ये ऐसा सीन निकला जिसकी वजह से ये फिल्म आज तक जानी जाती है। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, बस कहीं भी मत जाना।

फिर से वो टाइम आ गया जब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बिकॉज अगला गाना इज़ अ कल्ट सॉन्ग। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ सदमा की बात हो रही है, तो वो गाना ना हो जो जब भी हम थोड़ा सा डगमगाते हैं या ज़िंदगी से नाराज़ होते हैं, निराश होते हैं, तो ये गाना सबसे पहले जहन में आता है। सुरेश वाडकर की आवाज़ है, इलिया राजा की कॉम्पोजिशन है और गुलजार साहब ने लिखा था ये। यही गाना तमिल में, यानी जब ये फिल्म तमिल में बनी थी ओरिजिनली, तो ये तमिल की फिल्म थी जिसको हिंदी में फिर से बनाया गया था, यही गाना था पुंगात्रु पुथी नाथू कुछ ऐसे करके, मैं ठीक से शायद प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ये वाला ए जिंदगी गले लगा ले। कौन लिख सकता था ये गुलजार साहब के अलावा कि हमने भी तेरे हर गम को गले से लगाया। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

श्रीदेवी की सारी फिल्मों में से सबसे बेहतरीन मानी जाती है सदमा फॉर हर एक्टिंग स्किल्स। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, और जैसे दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, वैसे ही रोल रोल पे लिखा होता है एक्टर का नाम। एक्चुअली मैं रोल पहले करने वाली थी डिंपल कपाटिया, बट एट दैट टाइम उनके पास ना बल्क में डेट्स नहीं थी इस फिल्म को देने के लिए। दो शी वॉन्टेड टू डू द फिल्म बिकॉज उनको स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी, तो उनको ना उस समय सागर के लिए रोप इन किया हुआ था सिप्पी साहब ने, एंड शी कुड नॉट गिव डेट्स फॉर दिस फिल्म। एंड देन केम श्रीदेवी जी, जिन्होंने इस रोल को चार चांद लगा दिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं ये फिल्म ना अगर किसी भी चैनल पे आ रही होती है ना, आई अवॉइड सीइंग दिस फिल्म, क्योंकि सदमा ना आपको एक सदमा दे के जाती है। इसका क्लाइमैक्स आपके साथ रहता है फॉर अ कपल ऑफ डेज। यू कीप थिंकिंग अबाउट द फिल्म, यू कीप थिंकिंग अबाउट कमल हसन, यू कीप थिंकिंग अबाउट श्रीदेवी जी। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें, मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
3: हाँ जी बोलिए।
4: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
3: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
5: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
3: कौन बोल रही है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
3: स्कीम मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
6: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
3: हेलो कौन बोल रहा है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
3: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
5: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
3: हेलो मैडम।
4: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
3: कौन बोल रहा
4: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
3: अभी कोई और बोल रही थी।
4: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
3: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
7: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
3: कौन बोल रहा है?
4: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
3: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
8: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
3: कौन बोल रहा है भैया?
4: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
3: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
9: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
4: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या कौन बोल रहा है यार? मैं बोल रहा हूँ आपसे, रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
10: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
3: थैंक यू
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

तमिल में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी इसका नाम था मुंद्रम पिराई, और लोगों का कहना है कि फ्रेम टू फ्रेम सेम फिल्म उठा करके रखी गई इन हिंदी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म सदमा की, जो सबसे पहले तमिल में बनी, उसके बाद इसको हिंदी में बनाया गया। सो अ लॉट ऑफ पीपल से, अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स ऑल्सो से कि ये ना ये रीमेक नाम की कोई चीज ही नहीं थी इसमें, इसमें एज इट इज फ्रेम टू फ्रेम काम कराया था। और इसमें भाई तमिल वर्जन में भी ऑफकोर्स श्रीदेवी और कमल हसन थे, लेकिन हिंदी में किसी हिंदी फिल्म के लिए दोनों एक साथ पहली बार काम कर रहे थे, एंड दैट वॉज सदमा। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें आज श्रेया के साथ होती रहेंगी। इन केस आपको मुझे सदमा के बारे में कुछ बताना है, आई एम श्योर अगर आप रेट्रो फैन हैं, आपने ये फिल्म देखी होगी, तो डू शेयर योर फीलिंग्स फेसबुक और इंस्टा पे। माय हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA विद लव।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मूवी के मेकर्स का ऐसा सोचना था कि सदमा फिल्म इतनी चलेगी नहीं। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ इस फिल्म ने तमिल वर्जन में तो बहुत कमाल किया था, लेकिन जब इसको हिंदी में बनाया जा रहा था ना, तो सबके डाउट्स थे। डाउट्स इसलिए थे क्योंकि उस टाइम पे 1980s में एक तरफ बच्चन साहब की एक्शन फिल्में आ रही थी, दूसरी तरफ काका की रोमांटिक फिल्में आ रही थी, उसके बीच में इतनी इमोशनल फिल्म जिसका इतना डिप्रेसिव एंड हो, सो द मेकर्स थॉट कि भाई फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाल नहीं करेगी, व्हिच एक्चुअली हैपेंड। भाई बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा क्राउड उस समय नहीं आया, लेकिन हाँ, इस फिल्म ने कल्ट का स्टेटस लिया, एंड स्पेशली आज के दौर में दिस फिल्म इज अ माइलस्टोन दैट एक्चुअली श्रीदेवी जी एंड कमल हसन अचीव्ड। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, कहीं भी मत जाना।

सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी गड्डी में बैठो और हवा बहुत अच्छी चल रही है। आज हाईवे पे जाने से पहले गाड़ी के शीशे नीचे करेंगे।
1: हरे हरे
0: Alright, आज का मेरा हाईवे हेट मैं उन दीवानों को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो अपने आप को सबसे बड़ा दीवाना मानते हैं अपने प्यार के लिए और कहते हैं
1: मुझसा नहीं
0: इस अंबर के नीचे। अगर आप ऐसे दीवाने हैं तो ये गाना आज आपको सेलिब्रेट करते हुए। रफी साहब की आवाज, मैं हूँ श्रेया, जाने का टाइम हो गया। विल सी यू टुमारो। इन केस मुझसे कुछ कहना है तो फेसबुक और इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव, ये है मेरा हैंडल। गुड नाइट।

0: यार हमारे दोस्तों को अप्रिसिएशन के नाम पे सांप क्यों सूंघ जाता है?
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: नहीं, नॉट एवरीबडी फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी, बट हाँ कुछ दोस्त जरूर हैं जो इन जनरल अपने आसपास अगर देखते हैं कि बहुत पॉजिटिव सा कुछ हो रहा है, कोई इंसान अपनी लाइफ में बहुत अच्छा सा कुछ कर रहा है तो उसको फॉलो करते हैं, अपनी लाइफ को भी थोड़ा बेटर करने की कोशिश करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू अप्रिसिएशन, स्पेसिफिकली अप्रिशिएटिंग अपने किसी दोस्त का काम, तो भाई इनको सांप सूंघ जाता है, ये चारों खाने चित हो जाते हैं। कहां ये कल तक बॉलीवुड सेलिब्रिटी से इंस्पिरेशन लेते थे, आज तो ये गांधी जी के एंटी बंदर बन के बैठ जाते हैं, जो अच्छा ना देखते हैं ना सुनते हैं ना बोलते हैं। सो बेसिकली सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म का नाम है कर्तव्य, जो 15th ऑफ मई को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है, राइट? और इस फिल्म में उनकी जो कोस्टार है रसिका दुग्गल, उनके अप्रिसिएशन में सैफ अली खान ने बजाबते कहा है दैट ही थिंक्स दैट ही इज अ बिग फैन ऑफ रसिका। भाई ये दोनों तो आपस में दोस्त भी नहीं है, दे वर जस्ट कोस्टार्स, तब इस तरीके की अप्रिसिएशन आ रही है, हमारे दोस्त नामुराद क्यों हो जाते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। वैसे माइंड यू, इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है रेड चिली एंटरटेनमेंट, विच इज ऑफ कोर्स शाहरुख खान एंड गौरी खान का प्रोडक्शन हाउस। So I guess you should mark your calendars for the 15th of May. Mirchi pe main hoon Shruti, aapke saath. Stay tuned, it's hot.

0: Milci. Iskra bana, puska bana, saka bana. Ja bana. Burka, burka. Na vid bala burka.
1: Milci, burka. Hello?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस।
1: कौन बोल रहा है
2: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रही है?
2: क्या मजाक चल रहा है ये? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बने। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: हर गाना हिट हर दूसरा गाना सुपर हिट
4: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।

यार अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। धूरंधर द रिवेंज की बात कर लेते हैं, जिसने थिएटर्स में 50 ग्लोरियस डे कंप्लीट कर लिए हैं और उसके बाद अब OTT पे नजर आने वाली है। सो बेसिकली अब्रॉड के जो ऑडियंस है उनको ये पता चला है दैट नेटफ्लिक्स पे ये फिल्म 14th of May से स्ट्रीम करना शुरू करेगी, विच विल हैव अ लॉन्गर वर्जन, यानी ये फिल्म 3 घंटे 52 मिनट की होने वाली है। बाकी इंडियन ऑडियंस के लिए ये कब अवेलेबल होगी उसका अभी इन्फो नहीं है, बट जैसे ही पता चलेगा आपको जरूर बताऊंगी। भाई नोरा फतेही ने फाइनली माफी मांग ली है। सो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने उनको समन किया था फॉर दिस कंट्रोवर्सी ओवर केडी द डेविल मूवी का गाना सर के चूनर, जिसमें नोरा ने गलती की माफी मांगते हुए कहा कि हाँ अगर किसी से मिस्टेक होता है तो उसको एक्सेप्ट करके इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, बट देयर वाज नो इंटेंट ऑफ ऑफेंडिंग एनीबॉडी, व्हिच मेक्स मी थिंक कि यार इस गाने में संजय दत्त भी थे ना और उनको तो हिंदी आती थी, तो उनके ऊपर इतनी कार्रवाई क्यों नहीं चल रही। नाउ टॉकिंग अबाउट संजय दत्त, उनकी अपकमिंग फिल्म आखिरी सफाल काफी टाइम से सेंसर इश्यूज में अटकी हुई थी, बट फाइनली उसका टीजर रिलीज हो चुका है एंड द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 15th of May, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: श्रुति
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
2: कसम से। एक सच्चा फिल्मची होगा ना तो वो गेस कर चुका होगा दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कुणाल खेमू। अंजी, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट्स फॉर एवरीथिंग दैट ही डज ऑलवेज। इनफैक्ट जब से उनका ये फादरहुड एरा शुरू हुआ है ना, उसके बाद से तो ये इंसान और भी ज्यादा दिल के करीब हो गया है मेरे। सो रिसेंटली उनका एक गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम है निंदिया, और उन्होंने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि भाई ये गाना उन्होंने अपनी बेटी के लिए लिखा था, यानी इनाया के लिए लिखा था, एंड दैट ही यूज टू सिंग टू हर एज अ लल्लुबाई। ओहो, और कसम से कभी कभी लगता है कि ये इंसान क्या कुछ नहीं करता ना। एक्टिंग से शुरुआत की, उसके बाद डायरेक्शन भी किया, अब लिखता भी है, गाने भी गाता है, मतलब कोई चीज है जो ये छोड़ने वाले हैं। बट ना ही छोड़े तो अच्छा है, बिकॉज व्हाटएवर ही डज टू द बेस्ट। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: 300 फॉलोअर्स गिरने की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: नहीं, फॉलोअर्स गिरने की कीमत तो अभी हर दूसरा इंसान झेल रहा है जो कंटेंट की दुनिया में फिलहाल अपना प्रोफाइल चला रहा है। मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, एंड आपको पता ना चला हो तो लेट मी टेल यू, रिसेंटली इंस्टाग्राम ने एक छटाई अभियान की शुरुआत की है जिसको जनरली लोग इंटरनेट पर कह रहे हैं द ग्रेट पर्ज ऑफ 2026। और इसके अंडर इंस्टाग्राम ने दारोमदार उठाया है कि भाई जितने भी बॉट फॉलोअर्स हैं लोगों के, उसको एकदम से कट डाउन कर दिया जाए। एंड एज अ रिजल्ट बहुत सारे सेलिब्रिटीज के भी फॉलोअर्स एकदम से कम हो गए हैं, 1-2 हजार नहीं भैया, मिलियंस में कम हुए हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रियंका चोपड़ा। वो पहले 94 पॉइंट सम मिलियंस पे थी, अब वो 93 पॉइंट सम मिलियंस पे आ चुकी हैं। विराट कोहली हैज गॉन डाउन फ्रॉम 276 पॉइंट सम मिलियंस टू नाउ 274 पॉइंट सम मिलियंस। इसके अलावा काइली जेनर और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे स्टार्स के भी फॉलोअर्स कम किए गए हैं। जैसे क्रिएटर्स के इस यूनिवर्स में हम भी एक छोटे से सितारे हैं और हमारे भी 300 फॉलोअर्स कम हो गए हैं। यार बहुत जोर से झटका लगा है। अब एक चीज मैं इंस्टाग्राम को बोलना चाहती हूँ कि भैया हमें तो पता नहीं होता ना कि कौन सा बॉट फॉलोअर है कौन सा नहीं है, लेकिन

0: Mirchi.
1: Escava la buscava na sacabana. Murga, murga. La vispa la murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hi, ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
4: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए।
4: 33501।
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
5: हाय।
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए।
4: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
6: ये बेल जा रही है।
4: हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई तो एक बात सुन, ये आपके
4: पास
2: है?
4: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
2: किससे पूछे जा रहे हैं?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
2: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
4: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना होता है।
4: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
7: विके, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
2: किसने दिया मेरा नंबर?
7: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
2: अरे मैं खुकड़ू को।
8: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ये पका।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: How do you define an ideal mother?
1: Shruti, Shruti, Shruti.
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब बाबू मोशाय, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने तो माओं को एक अलग ही कैरेक्टर दे रखा है, उनका एक अलग पोर्ट्रियल कर रखा है। जो अपने बच्चों को एकदम परफेक्ट बनाना चाहती थी, उसके दिमाग में होता था कि हाय हाय मेरे बच्चों को लेकर लोग कुछ ना कहें एंड ऑल दैट जैज। बट थैंकफुली विद द चेंजिंग टाइम्स, द प्लॉट एंड द कैरेक्टराइजेशन ऑफ मदर इज ऑल्सो चेंजिंग। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी ही माओं की बात कर रही हूँ। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट फिल्म डार्लिंग से शमशू के कैरेक्टर के बारे में, प्लेड बाय शेफाली शाह। अब नंबर दो पे मैं बात करना चाहती हूँ 2022 में आई ड्रामा सीरीज द फेम गेम के बारे में, स्टारिंग माधुरी दीक्षित एज अ मदर। अब इसमें जो अनामिका का कैरेक्टर है, दैट इज माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर है, वो ऑलरेडी एक विक्टिम है ऑफ एन अब्यूजिव मैरिज, लेकिन वो अपने सारे डर को अपने पीछे रख देती है जब बात उसके बच्चों पे आती है। शी नॉट ओनली मेक श्योर टू बी एन इमोशनल सपोर्ट फॉर हर सन, बट ऑल्सो रियलाइजेस कि अगर उसके बेटे को अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर बाहर आना है, सामने आना है, देन शी विल हैव टू फाइट हर हस्बैंड। और ऐसा ही उसने किया। वेल, माधुरी दीक्षित कैरेक्टर वॉज अ ड्राइविंग फोर्स एंड अ कॉन्स्टेंट पिलर फॉर हर चिल्ड्रन इन अ वर्ल्ड दैट फेल्ड देम इन मेनी वेज। लिटरली चुम्मा परफॉर्मेंस बाय माधुरी दीक्षित यार। मूविंग ऑन इन द लिस्ट, नंबर तीन पे बात करना चाहूंगी गंगूबाई की, फ्रॉम गंगूबाई कठियावाड़ी। देखो, गंगूबाई एक माँ लिटरल सेंस में नहीं थी, बट वो बहुत सारे बच्चों की माँ थी, एंड स्पेसिफिकली उन बच्चों की हु वर शेम्ड बाय सोसाइटी। आप खुद सोचो ना, फ्रॉम गेटिंग दोज चिल्ड्रन एडमिटेड टू अ स्कूल टू मेकिंग श्योर कि कोई दूसरी लड़की इस प्रोफेशन में फोर्सफुली ना आ पाए। शी वॉज ऑल्सो

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: यार मेरे हिसाब से ये भगवान का दूसरा रूप नहीं, साक्षात भगवान ही है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: बाबू मोशाय, मैं हमारी माओ की बात कर रही हूँ। और स्पेसिफिकली हमारी माओ से अगर हम फोकस शिफ्ट करें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की माओ के ऊपर, तो एक टाइम था जब फिल्मों में माँ को काफी वीक, वल्नरेबल, फ्रेजाइल सा पोर्ट्रे किया जाता था। बट विद चेंजिंग टाइम्स थिंग्स आर चेंजिंग एंड द कैरेक्टर्स ऑफ माँ इज वेल। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी ही एम्पावर्ड माओ की बात कर रही हूँ। सो लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर चार पे लेट्स टॉक अबाउट सीक्रेट सुपर स्टार से नजमा की, जिनके घर में नजमा और उसकी बेटी दोनों के पर्सनल चॉइसेस जो होते हैं उसको खत्म कर दिया जाता है। बट शी लर्न्स टू फाइट बैक एंड ऑल्सो मेक श्योर कि उसकी बेटी के जो एम्बिशंस हैं उसको वो परस्यू कर पाए। अब चाहे उसके लिए नजमा को किसी भी हद तक जाना पड़े, कुछ भी झेलना पड़े। मूविंग ऑन, नंबर पांच पे बात करना चाहूंगी नीना गुप्ता की फ्रॉम द सीरीज मसाबा मसाबा। नीना गुप्ता और मसाबा गुप्ता रियल लाइफ में भी माँ बेटी हैं और उन्होंने अपने बॉन्ड को पोर्ट्रे किया रियल लाइफ में भी। हाँ, उन दोनों के ओपिनियंस जनरली सेम नहीं होते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं होता कि वो दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। नीना गुप्ता फ्रॉम येलिंग एट मसाबाज इन्वेस्टर टू फाइनली कमिंग अराउंड हर चॉइसेस। एंड बाय द एंड नीना गुप्ता को पता होता है कि आफ्टर ऑल उसकी बेटी को क्या चाहिए। उससे ज्यादा ब्यूटीफुल, उससे ज्यादा मैजिकल और क्या हो सकता है यार। सो या, थैंक्स टू द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री फॉर चेंजिंग द पोर्ट्रेयल ऑफ मदर्स। बाकी आप भी इस लिस्ट में किसी ऐसे ही माँ वाले कैरेक्टर को ऐड करना चाहो, देन फील फ्री टू डू दैट। ऑल यू नीड टू डू इज कनेक्ट विद मी ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। आई एम देयर विद द नेम MIRCHISHRUT।

यार अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। धूरंधर द रिवेंज की बात कर लेते हैं, जिसने थिएटर्स में 50 ग्लोरियस डे कंप्लीट कर लिए हैं और उसके बाद अब OTT पे नजर आने वाली है। सो बेसिकली अब्रॉड के जो ऑडियंस है उनको ये पता चला है दैट नेटफ्लिक्स पे ये फिल्म 14th ऑफ मई से स्ट्रीम करना शुरू करेगी, विच विल हैव अ लॉन्गर वर्जन, यानी ये फिल्म 3 घंटे 52 मिनट की होने वाली है। बाकी इंडियन ऑडियंस के लिए ये कब अवेलेबल होगी उसका अभी इन्फो नहीं है, बट जैसे ही पता चलेगा आपको जरूर बताऊंगी। भाई नोरा फतेही ने फाइनली माफी मांग ली है। सो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने उनको समन किया था फॉर दिस कंट्रोवर्सी ओवर केडी द डेविल मूवी का गाना सर के चूनर, जिसमें नोरा ने गलती की माफी मांगते हुए कहा कि हाँ अगर किसी से मिस्टेक होता है तो उसको एक्सेप्ट करके इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, बट देयर वाज नो इंटेंट ऑफ ऑफेंडिंग एनीबॉडी, व्हिच मेक्स मी थिंक कि यार इस गाने में संजय दत्त भी थे ना और उनको तो हिंदी आती थी, तो उनके ऊपर इतनी कार्रवाई क्यों नहीं चल रही। Now talking about संजय दत्त, उनकी अपकमिंग फिल्म आखिरी सफाल काफी टाइम से सेंसर इश्यूज में अटकी हुई थी, बट फाइनली उसका टीजर रिलीज हो चुका है एंड द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 15th ऑफ मई, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

दोस्तों मंडे का मतलब रीसेट का बटन दब चुका है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और वीकेंड के बाद जब अलार्म्स वापस सीरियस हो जाते हैं ना, तब लगता है कि गेम फिर से शुरू हो चुका है। जी हाँ, फ्रेश पेज यानी फ्रेश चांस। गलतियाँ कल ही रह जाती है, आज सिर्फ पॉसिबिलिटीज होती है। क्योंकि मंडे थोड़ा डिमांडिंग ज़रूर होता है, पर साथ ही एक साइलेंट प्रॉमिस भी करता है कि इस वीक ज़रूर कुछ अच्छा होगा। तो दोस्तों, अगर आपका भी इस वीक का रीसेट हो चुका है तो मुझे ज़रूर बताना ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI कि इस मंडे को रीसेट करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए कौन सा खास गाना बजाओ। फिलहाल के लिए आपके मंडे को रीस्टार्ट करने के लिए ये धमाकेदार गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana.
1: Cabana.
0: Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ। हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा है?
3: रमेश बोल रहा हूँ सर।
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
2: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
2: कोई बोल रहा
3: है? कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
10: थैंक यू।
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम, दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और सूरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी। एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विद फ्लेवर्स, स्पाइसी क्रंची और देसी फन, या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धी के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम द लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और आज का हंगामा आ रहा है धूम थ्री के मलंग गाने से। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर कैटरीना कैफ का एरियल एक्ट यानी जितने भी सर्कस स्टाइल परफॉर्मेंसेस थे, फ्लिप्स थे, बैलेंस थे, ग्रेस था, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन पर्दे के पीछे इस गाने के लिए ना एक फुल ऑन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड था, क्योंकि कैटरीना ने इस गाने के लिए प्रोफेशनल एक्रोबैटिक ट्रेनिंग ली थी, बॉडी कंडीशनिंग की थी और मंथ्स तक रिहर्सल किए थे, क्योंकि ये कोई रेगुलर बॉलीवुड डांस नहीं था। इसमें स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और टाइमिंग सब कुछ एक साथ चाहिए था। और शूट के टाइम पर भी ना सेफ्टी और प्रिसीजन का पूरा ध्यान रखा गया था। तो सोचिए दोस्तों, जो परफॉर्मेंस हम बस 3 मिनट के लिए पर्दे पर देखते हैं, उसके पीछे महीनों की जिम और ट्रेनिंग छुपी होती है। तो इसका मतलब तो साफ है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सिर्फ डांस ही नहीं, फुल एथलीट बनना पड़ता है। और शायद इसीलिए कहते हैं बॉलीवुड का डांस नहीं है आसान। तो चलिए सुनते हैं धूम थ्री का मलंग गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन से गाने के पर्दे के पीछे के किस्से आपको सुनने हैं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Radio Mitri, New York. It's hot.

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम का लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। और आज का हंगामा आ रहा है ओमकारा मूवी का बीड़ी जलाई ले इस गाने से। वैसे तो यार स्क्रीन पर बिपाशा बासु का फुल देसी स्क्वैग और रस्टिक डांस और एकदम रॉ एनर्जी तो हमें सबको बहुत पसंद आई थी, पर पर्दे के पीछे विशाल भरद्वाज और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था ऑथेंटिसिटी का, क्योंकि सेट को ना इंटेंशनली ग्लैमराइज नहीं किया गया था बल्कि धूल मिट्टी यानी रियल यूपी फील देने के लिए बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट्स किए गए थे कि यार लगे कि ये यूपी का सेट है, मतलब मजा मस्ती होने वाला है। तो सोचिए दोस्तों, ये गाना पॉलिश नहीं, पर्पसफुली इम्परफेक्ट बनाया गया था ताकि रियल लगे। तो मतलब बात तो बहुत सिंपल है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी परफेक्शन नहीं, ऑथेंटिसिटी हिट हो जाती है। तो ऐसे ही पर्दे के पीछे के किस्सों के लिए मुझे जरूर बताइए कि ऐसा कौन सा गाना है जिसके पर्दे के पीछे के किस्से आपको जानने। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल सुनते हैं सुनीति चौहान की आवाज में बीड़ी जलाई ले फ्रॉम द मूवी ओमकारा राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

शाम शाम का लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल मंडे इवनिंग। वैसे मदर्स डे का वीकेंड पास ऑन हो चुका है और यार इस वीकेंड को ना एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है। मतलब सोचिए ना, कोई भी सोशल मीडिया खोलो तो हर जगह मॉम्स ही मॉम्स दिखाई देते हैं, ओल्ड फोटोज, इमोशनल कैप्शन, चाइल्डहुड स्टोरीज, क्योंकि यार हर कोई ना अपनी मॉम को बड़े प्यारे तरीके से दिल खोल के विश करना चाहता है। लेकिन इस सब के बीच ना मुझे बचपन की वो वाली फीलिंग याद आती है। याद है जब हमें रिलेटिव्स कुछ पैसे देने की कोशिश करते हैं एज शगुन या प्यार, तो हम ऊपर ऊपर से कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से ना थोड़ा अच्छा ज़रूर लगता है। बस मॉम्स को भी ना शायद वैसी ही फीलिंग आती होगी। ऊपर से तो वो बोलती है कि यार इसकी क्या ज़रूरत है, पर अंदर ही अंदर ना वो एक्स्ट्रा हग, वो पोस्ट, वो फ्लावर्स उनके चेहरे पे भी ना एक प्यारी सी मुस्कुराहट ले ही आती है। क्योंकि कभी कभी अप्रिसिएशन लाउड नहीं होता, बस आंखों में हल्का सा स्पार्कल लेके आ जाती है। तो अगर आपने भी अपनी मॉम को थोड़ा एक्स्ट्रा फील करवाया है, ट्रस्ट मी, उन्हें ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो आप भी बताना दोस्तों कि आपकी मॉम का क्लासिक रिएक्शन क्या था जब आपने उन्हें मदर्स डे विश किया। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए मम्मी स्पेशल ये अगला गाना राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yambala. Murga, murga. Murga. La vieva la murga. Milci, murga.
1: Hello?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस।
1: कौन बोल रहा है
2: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रही है?
2: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़ते। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अच्छा लगता है ना जब हमारे लिए कोई अबाव एंड बियॉन्ड जाए। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और सोचिए कि हम जिम ज्वाइन करें तो यार ट्रेनर सिर्फ एक्सरसाइज ही ना बताए बल्कि पोस्चर भी करेक्ट करे, प्रोग्रेस भी चेक करे और इंजरी होने से पहले ही रोक ले। यार कितना अच्छा लगेगा कि ऐसे अबाव एंड बियॉन्ड सभी अपने काम में जाए। क्योंकि यार बड़े बड़े डिसीजंस जैसे कि होम बाइंग भी एक ऐसी ही चीज़ होती है जहाँ सिर्फ लोन अप्रूवल नहीं होता, राइट गाइडेंस, राइट प्लानिंग और वो एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए होता है जो हमें लॉन्ग टर्म में एक सही डिसीजन लेने में मदद करें। और इसी एक्स्ट्रा माइल के बारे में आज बात करने वाले हैं मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
1: गुड इवनिंग मिचेल लिसनर्स, योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। होप यू ऑल हैड अ वंडरफुल वीकेंड। लिटिल कूलर टुडे बट नॉट बैड। एंड टुडे द यूएस मार्केट्स वेवर एज प्रेसिडेंट ट्रंप रिजेक्ट्स ईरान रिस्पांस टू डील एंड रेट्स आर ऑन द राइज। मॉर्गेज रेट्स जस्ट नज्ड अप स्लाइटली टुडे। हियर व्हाट दैट मींस फॉर यू। Rates are still volatile, but don't let that spook you. These daily shifts are normal like the tide. They rise and fall with economic currents. Great time to get pre-approved before listing surge. If you've been waiting for the right moment, this could be it. Call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, 30-year fixed mortgage rate 6%, 20-year fixed mortgage rate 5.875%, 15-year fixed mortgage rate 5.375%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. It is lionmtg.com. Well, friends, refinancing is still alive and well at the same time. Home values are on the rise, creating incredible opportunities to cash out or consolidate debts by paying off high interest rate credit card debts, student loans, or any private loans, or if you have loan with a PMI. And don't forget to ask us about our zero closing cost refinance option. So friends, buying your dream home or refinancing, please call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

दिन भर की भागदौड़ में रह गई हो बॉलीवुड की न्यूज पेंडिंग, तो मैं हूं ना आपको बताने व्हाट्स ट्रेंडिंग। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हां, सस्पेंस लवर्स के लिए बहुत बड़ा अपडेट, दृश्यम 3 का ट्रेलर आ चुका है। और वैसे यार, इस मूवी में मोहनलाल रिटर्न्स एज जॉर्ज कुट्टी, और ये ट्रेलर ना बहुत ही ज़्यादा डार्कर चैप्टर रिवील करता है एज ओल्ड सीक्रेट्स कम बैक टू हॉन्ट हिम। वैसे दृश्यम फ्रेंचाइज के बारे में यही एक बहुत बड़ा चार्म है कि अलाउड नहीं होती, लेकिन दिमाग को फुल टाइम काम पे लगा देती है, क्योंकि हर सीन में डाउट, हर साइलेंस में एक क्लू होता है। तो आप भी बताना दोस्तों, दृश्यम देखते वक्त क्या आप भी डिटेक्टिव बन जाते हो या बस एंड ट्विस्ट का वेट करते हो? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। तो जा तू

0: से करेंगे सबका स्वागत।
1: शाम शानदार, let's do nautanki, have a funky time।
2: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है दिल धड़कना दो मूवी के गल्ला गुड़िया गानों से। वैसे यार ये गाना स्क्रीन पर तो फुल ऑन फैमिली मस्ती लगता है, मतलब सब नाच रहे हैं, कैमरा घूम रहा है, एनर्जी नॉन स्टॉप है। पर पर्दे के पीछे असली कमाल ये था कि डायरेक्टर ज़ोया अख्तर ने इस गाने को एक टेक में शूट किया है। जी हाँ, इसके लिए हर जो एक मूवमेंट था वो प्लान था, हर कैमरा टर्न प्लान था, हर एक्टर की एंट्री एग्जिट और कोरियोग्राफी डिटेल में रिहर्स की गई थी। तो कैमरा जब चालू हुआ यानी रोलिंग जब चालू हुई, उसके बाद पूरा गाना खत्म होने के बाद ही वो रोलिंग बंद की गई थी। और ज़ोया अख्तर ने खुद कहा था कि इतनी प्लानिंग और मैनेजमेंट हुई थी तब जाके ये पॉसिबल हुआ है। तो सोचिए दोस्तों, हम तो कभी कभी ऑफिस में अपने बॉस को अगर छुट्टी मांगनी है तो एक स्ट्रेट वॉइस नोट भी एक टेक में रिकॉर्ड करके नहीं भेज पाते, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा गाना, पूरा का पूरा कास्ट, मूविंग कैमरा, डांस, टाइमिंग, एक्सप्रेशन, सब कुछ एकदम सिंक में चल रहा था। मतलब यार स्क्रीन पर जो फुल चिल फैमिली वाइब लग रही थी ना, उसके पीछे स्टॉप वॉच लेवल डिसिप्लिन और टीम वर्क था। तो ये बात तो बहुत जाहिर सी है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सबसे नेचुरल दिखने वाली चीज उसके पीछे सबसे ज्यादा प्लानिंग होती है। तो दोस्तों आप भी मुझे बताना कैसा लगा आपको ये पर्दे के पीछे का किस्सा, और ऐसे ही गानों के पर्दे के पीछे के किस्से जानने के लिए मुझे जरूर बताना विच इज योर फेवरेट सॉन्ग। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल ये वन टेक का कोरियोग्राफ किया हुआ गाना सुनते हैं, गल्ला गुड़िया फ्रॉम दिल धड़कने दो, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, बॉलीवुड कॉमेडी का एक फेवरेट फॉर्मूला वापस आ रहा है, रिलेशनशिप कंफ्यूजन, ऑकवर्ड सिचुएशन और फुल ऑन फैमिली स्टाइल केओस। शाम शाम लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हां, पति पत्नी और वो दो का ट्रेलर आ चुका है और इसमें फीचर हो रहे हैं आयुष्मान खुराना, वमिका गाबी, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह, डायरेक्टेड बाय मुद्दर अजीज। वैसे ट्रेलर का वाइब तो काफी क्लियर है, रोमांस भी है, कंफ्यूजन भी है और वो टिपिकल अब कौन किसके साथ है वाली कॉमेडी। वैसे मेरा टेक तो ये है इस पे कि यार, अगर राइटिंग शार्प हुई ना तो जी हाँ, ये फिल्म वीकेंड लाफ्टर डोज जरूर बन सकती है। लेकिन मुझे इस बात से बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका है बॉलीवुड में कि यार कब तक वही घिसा पिटा फॉर्मूला यूज करोगे, क्या कभी कोई नई कॉमेडी नहीं आ सकती? और उससे भी ज्यादा मुझे कंफ्यूजन इस बात का है, इनफैक्ट क्यूरियोसिटी इस बात की है कि वाई आयुष्मान खुराना, वाई आर यू डूइंग सच प्रोजेक्ट्स। वैसे थोड़ा सा मुझे इस वजह से यू नो क्यूरियोसिटी तो है कि शायद आयुष्मान ने स्क्रिप्ट देखी होगी, पसंद की होगी, क्योंकि आयुष्मान की स्क्रिप्ट चूजिंग पे थोड़ा सा भरोसा तो है। तो हाँ, उस वजह से थोड़ा लगता है कि शायद कोई हटके स्टोरी हो सकती है, लेकिन ट्रेलर देख के लग तो नहीं रहा है कि ज्यादा हटके होने वाली। वैसे आप ही बताओ दोस्तों, आपको रिलेशनशिप कॉमेडी पसंद है या आप भी बोलते हो कि यार रियल लाइफ में इतना कंफ्यूजन है, अब वही चीजें स्क्रीन पर नहीं देखनी? जरूर बताना, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आयुष्मान का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La fiesta la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hi. Ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
4: विकी जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए।
4: 33501।
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
5: हाय।
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास भी है।
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए।
4: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
6: ये बेल जा रही है।
4: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई, तो एक बात सुन, ये आपके हो
4: पास
2: गया है।
4: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
2: किस से पूछे जा रहा है तू?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
2: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
4: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह बचाने के लिए थोड़ी ना आता है।
4: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
6: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
2: किसने दिया मेरा नंबर?
6: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
2: अरे मैं कुकड़ू को।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

लंबी लंबी ट्रिप्स के बाद अगर कोई एक चीज की क्रेविंग होती है तो वो क्या है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सबके दिल से एक ही आवाज निकली होगी, घर के खाने की। जी हाँ, सफर चाहे कितना भी अच्छा हो, बाहर कितना भी खा लिया हो, एक पॉइंट के बाद ना दिल बस कुछ सिंपल, गर्मा गर्म और अपना सा चाहता है। आपने कभी नोटिस किया है, थकान तो आधी तब उतर जाती है जब किचन से हल्की सी तड़के की खुशबू आती है, और फिर याद आता है कि कुछ कंफर्ट फूड ना फैशनेबल नहीं होते, बस फॉरएवर होते हैं। और मेरे लिए उस सुकून का एक ही नाम है, एक गर्मा गर्म बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी, हल्की सी घी, साथ में थोड़ा सा अचार, और बस जैसे सफ़र की सारी थकान ही उतर गई हो। बॉडी को ऐसा ईज मिलता है और दिल को भी इतना ज़्यादा सुकून मिलता है विद जस्ट दैट वन बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी। इतना सिंपल सा खाना, लेकिन क्या कमाल का कम्फर्ट है, ऑनेस्टली अंडररेटेड। और ऐसे ही घर वाले स्वाद के लिए आज ही ले आइए दीप प्रीमियम इंडियन ओरिजिन मूंग दाल फ्रॉम योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर। दीप, खाओ तो जानो और मुझे बताओ कि आपका कंफर्ट फूड क्या है। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम बन जाए जिसका हर एक गाना दिल को छू जाए। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जहां इतने सारे गाने बनते हैं, कुछ हिट होते हैं, कुछ फ्लॉप होते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं ना जिसका हर एक गाना दिल को छू जाता है। और 2008 की रिलीज दोस्ताना का एल्बम, ओ हो हो, इट वॉज वन दैट एल्बम जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक था। विशाल शेखर कंपोज, जिसके सारे गाने इतने अमेजिंग थे, लेकिन जब दोस्ताना रिलीज हुई थी और टीवी पे ये गाना रिलीज हुआ था तो माय गॉड, माइंड ब्लो हो गया था। जी हाँ, मतलब नॉर्मली ऐसे टीवी पे नॉर्मल कलर्स दिखते हैं, लेकिन सडनली एक दिन ब्लू पानी दिखने लगा। उसमें जॉन अब्राहम अपनी अमेजिंग सी स्माइल लेकर मायामी बीच पे दिखाई दिए विद शिल्पा शेट्टी डूइंग शट अप एंड बाउंस। माय गॉड, दैट सॉन्ग नॉट जस्ट ब्लू माय माइंड विजुअली बट ऑल्सो ब्लू माई माइंड म्यूजिकली, क्योंकि सुनिधि चौहान की आवाज़ और अमेजिंग सा ये गाना मायामी बीच पर शॉट, कि जब मायामी जाओ तो ये गाना दिमाग में प्ले ना हो, बैकग्राउंड में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज बातें करते हैं दोस्ताना के एल्बम के बारे में, एंड स्टार्टिंग विद दिस वन सॉन्ग शट अप एंड बाउंस राइट हियर ऑन मिर्ची। तो आपके लिए मैं बजाने वाली हूँ शट अप एंड बाउंस, लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, बिकॉज इट्स गोना बी शट अप एंड बाउंस बाय सुनिधि राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम बन जाए जिसका हर एक गाना दिल को छू जाए। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और 2008 में एक ऐसा ही एल्बम बना था जिसका यार हर एक गाना एक से बढ़कर एक था। बात हो रही है दोस्ताना मूवी की, या जिसका म्यूजिक दिया था विशाल और शेखर ने, और जिसको प्रोड्यूस किया था हमारे करण जौहर ने। वैसे तो यार शराब एंड बाउंस इस मूवी का सबसे ज़्यादा फेमस गाना था, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मायामी जा रहे हो और जॉन को इमेजिन ना करो, शिल्पा शेट्टी को इमेजिन ना करो, और ये गाना बैकग्राउंड में प्ले ना करो। लेकिन और एक गाना है इस मूवी का जो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही फन है, एंड दैट इज जम्मा द लाडला बिगड़ गया। मतलब माँ को अगर डायरेक्टली आपको डांटना नहीं है तो आजकल माएँ माँ द लाडला बिगड़ गया ही कह देती है। और जिस तरह से किरण खेर ने चिल्ला कर जोर से कह दिया था हाय रब्बा मैनू चख ले यार, उस वजह से वो लाइंस एक्चुअली गाने में थी ही नहीं, लेकिन वो इतने फीलिंग्स के साथ बोली गई थी कि विशाल जेकर ने डिसाइड किया कि ये जो पैच है ये हम गाने में, एक्चुअल गाने में भी यूज़ करेंगे। तो इसलिए बीच बीच में आपको किरण खेर की आवाज़ भी आएगी कि हाय रब्बा मैनू चख ले। बस माँ के जो फीलिंग्स है उसे विशाल शेखर जैसे कंपोजर्स भी बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर पाए, उन्होंने उनका पैच उस गाने में रखा और कहीं ना कहीं उसी वजह से ये गाना हिट हुआ है। तो चलिए सुनते हैं माँ द लाडला बिगड़ गया फ्रॉम दोस्ताना। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस मूवी, टेल मी ऑन इंस्टा एट RJMirchiSiddhi SIDDHI। और तब तक के लिए माँ द लाडला राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम बन जाए जिसका हर एक गाना दिल को छू जाए। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बना था और बिल्कुल बना था। 2008 में एक ऐसा एल्बम बना था दोस्ताना, जिसका यार हर एक गाना दिल को छू गया था। एंड वन ऑफ द मोस्ट पार्टी सॉन्ग्स जो इसी मूवी से, इसी म्यूजिक एल्बम से निकला है, दैट इज देसी गर्ल, संग बाय शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान एंड विशाल ददलानी। ये पूरा का पूरा एल्बम ही वैसे तो यार विशाल शेखर ने बनाया है, लेकिन ये जो गाना है वो काफ़ी खास है, क्योंकि इस गाने ने ना प्रियंका चोपड़ा को एक आइडेंटिटी दी। जी हाँ, मतलब प्रियंका चोपड़ा वैसे तो इस मूवी में लहरों में एंट्री मारते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन इस गाने के बाद देसी गर्ल हर शादी का एक एंथम भी बन गया। और हमें भी कहाँ पता था कि प्रियंका भी इंटरनेशनल हो जाएगी और उनकी एक आइडेंटिटी ही बन जाएगी देसी गर्ल। तो जी हाँ, देसी गर्ल वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सॉन्ग्स ऑफ दिस एल्बम। वैसे तो हम शट अप एंड बाउंस के बारे में बात कर चुके हैं और आप माता लाला तो सुन ही चुके हो, तो चलिए आपके लिए बजाते हैं देसी गर्ल राइट हियर ऑन मिर्ची। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक के लिए देसी गर्ल राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La fiesta la burga.
1: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस।
2: कौन बोल रहा है
3: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
2: क्या मजाक चल रही है?
3: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
4: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़े। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में, जहां हम बातें कर रहे हैं एक ऐसे खास एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना अमेजिंग है। जी हां, बात हो रही है 2008 में रिलीज दोस्ताना मूवी की, जिसके जो गाने हैं वो कंपोज किए हैं विशाल शेखर ने। और क्या कंपोज किए, मतलब एक से बढ़कर एक गाना है इस एल्बम में। और वैसे तो हम इतने सारे गाने प्ले कर चुके हैं, लेकिन एक सॉन्ग रिक्वेस्ट आई है रौनक पटेल से, जो कि रहते हैं पिस्कैटवे में। उन्होंने कहा है कि यार जब भी कोई ट्रिप जाती है और दोस्त साथ में होते हैं तो ये गाना तो हमेशा बजता ही है उस ट्रिप में फ्रॉम दिस मूवी, क्योंकि ये गाने का एक टैग लाइन है, तू है तो आई विल बी ऑल राइट। और हर बार दोस्तों के साथ यही फील होता है कि भाई तू है ना तो आई विल बी ऑल राइट। तो जी यार, चलिए इसी फीलिंग के साथ रौनक पटेल की रिक्वेस्ट पर ये गाना बजाते हैं फ्रॉम द मूवी दोस्ताना, विच इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एल्बम्स। तो दोस्तों आप भी मुझे बताइए ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जिसके सारे गाने आपको पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार बजाते हैं ना उसके सारे गाने यहाँ पर, और कहाँ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम के बारे में यार, जिसका हर एक गाना धमाकेदार है, दिल को छू जाने वाला है। जी हाँ, 2008 की रिलीज दोस्ताना मूवी, जिसे प्रोड्यूस किया था करण जौहर ने और जिसका म्यूजिक कंपोज किया था विशाल शेखर ने। यार क्या एल्बम बनाया, हर एक गाना दिल को छू जाने वाला था। और एक ऐसे ही गाने की रिक्वेस्ट आपसे आई है, दैट रिक्वेस्ट इज फ्रॉम प्रियंका। और प्रियंका कहती है, वैसे प्रियंका रहती है जर्सी सिटी में, लेकिन वो फिलहाल विजिट कर रही है एडिसन, अपने यू नो पार्टनर से मिलने आई है। और जब भी वो लोग डेट नाइट्स पर जाते हैं, तब ये गाना बहुत बार वो अपने प्लेलिस्ट में बजाते हैं। एंड दैट इज़ खबर नहीं इट्स एन आयरनी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डेट पे कहाँ जाना है यही हमको खबर नहीं होती, लेकिन ये जो गाना है श्रेया घोषाल की आवाज़ में, बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है, तो श्रेया घोषाल एंड शान की आवाज़ में। तो चलिए आज प्रियंका के लिए ये गाना प्ले करते हैं। आयरॉनिकली उनका नाम भी प्रियंका है एंड शी इज़ गोना लव दिस सॉन्ग। तो चलिए आज प्रियंका के लिए खबर नहीं प्ले करते हैं, लेकिन आप भी दोस्तों मुझे बता सकते हो विच इज़ दैट वन एल्बम जिसका हर एक गाना बहुत अमेजिंग है और आप कभी स्किप नहीं कर पाते हो। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरा तो काम ही है आपके लिए वो गाने प्ले करना, राइट हियर ऑन मिर्ची। और कहाँ, इट्स हॉट।

दोस्त एडल्टहुड का भी ना एक अजीब सा वर्जन होता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी एक वक्त था जब दोस्त रोज मिल जाते थे, लेकिन अब प्लान्स कैलेंडर पे होते हैं और सिटीज के नाम फ्रेंडशिप्स के बीच में आ जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से एक मैसेज आता है, आई एम इन टाउन फॉर अ फ्यू आवर्स, कैन वी मीट। और फिर क्या, पूरी ट्रिप के बीच में एक छोटा सा वक्त ऐसा निकलता है, चाहे फिर वो क्विक कॉफी हो, कभी लेट नाइट फ्राइज हो, कभी बस एक छोटा सा ड्राइव। लेकिन मिलते ही ना दोस्त की वो पहली लाइन होती है कि यार तू तो बिल्कुल नहीं बदला, और नेक्स्ट 2 घंटे में पूरा पुराना वर्जन ऑफ योर सेल्फ वापस आ जाता है। और मज़े की बात तो ये होती है कि इतने लंबे गैप के बाद भी ना कॉन्वर्जेशंस वहीं से शुरू होते हैं जहाँ लास्ट टाइम छोड़ी थी। और शायद इसीलिए पुराने दोस्त स्पेशल होते हैं, उनके साथ एफर्ट नहीं लगता, बस थोड़ा वक्त मिलना चाहिए। तो दोस्तों अगर इस वीक आप भी किसी पुराने दोस्त से मिलने वाले हो तो थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालना वही पुरानी यादों के लिए, क्योंकि कभी कभी एक क्विक मील में भी फुल थेरेपी लगती है। और मुझे जरूर बताना कि आपके वो पुराने दोस्त के लिए कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहोगे। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरे उस पुराने दोस्त के लिए जिससे मैं मिलूंगी उसके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।